आज रविवार है। शक संवत सन 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:56 और 30 सेकंड्स हो रहे हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ ही क्षणों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली

0: कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकाइना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदन वार।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मोदया परः। अर्थात हमारे जीवन में शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से तुरंत बाद सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 240। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इसका 5वां भाग आज आप सुन सकेंगे। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोणु मजुमदार, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी, आलोक एवं आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, संवादक हैं यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग सुन सकेंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 रात्रि 11 से विविधा, इसके अंतर्गत भरत व्यास, चेतन आनंद और मोहम्मद अजीज की चर्चा। दिन में 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 से सुरीला सफर, दोपहर 2 से त्रिवेणी,

दोपहर 3 बजे से 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक मालविका अग्निमित्र का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे। मूल संस्कृत नाटक महाकवि कालिदास की है और हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतर एवं निर्देशन चिरंजीत का। पिटारा शाम 4 बजे से, इसके अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत रीमा अमरापुर पत्थर से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। शाम 5 बजे से आप सुनते हैं छाया गीत का पुनर्प्रसारण, तराने नए पुराने शाम 5:30 से। संध्या रंजन ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:35 से। विशेष जयमाला शाम 7 बजे से, इसके अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत सुनिएगा असिस्टेंट कमांडर रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज।

रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटका बहादुर की शादी, लेखन हरी मेहरा की, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। रात 8:15 से चित्रलोक आपके लिए ये कार्यक्रम सुन सकेंगे। रात 9 बजे से छायागी सुनिएगा, रात 10 बजे आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 से और विविधा रात 11 बजे से। आपको याद दिला दें कि रात 9:30 और सुबह 9:30 से ही आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, संवादक हैं यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला की आज पांचवी कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं और रोनू दादा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। रोनू दादा, आज के इस कड़ी में हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत के महारथी, बांसुरी के महारथी, फिल्म लाइन में आप कैसे आए? और हमने तो सुना था कि कोई रेडियो कॉम्पिटिशन था जिसमें आप फर्स्ट आए थे।
2: जी,
1: वो तो शास्त्रीय रचना थी, फिर फिल्मों में कैसे?
2: मुझे तो अपने ऊपर विश्वास नहीं था।
1: हाँ।
2: क्योंकि मैं 17 साल का था।
1: जी।
2: मगर मेरे गुरुजी को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि जाके फॉर्म भरिए। पंडित विजय राघव राव जी ने कहा कि भानु दादा के नाम से प्रसिद्ध थे वो।
1: जी जी जी।
2: फॉर्म भरिए। तो मेरे पिताजी ने बोला कि वो इस लायक तो अभी नहीं है। बोले कि गुरु आप है या मैं हूँ।
1: वाह।
2: उस दिन मुझे गुरु की अहमियत मालूम पड़ी और पिताजी चुप, एक शब्द पिताजी उनके ऊपर बोल नहीं पाए। मतलब पिता से भी अगर कोई बड़ा है तो वो है गुरु। क्यों गुरु बड़ा है? क्योंकि गुरु जब ज्ञान दे देता है तो गुरु अगर नाराज भी हो जाए तो वो ज्ञान वो वापस छीन नहीं सकता।

0: बिल्कुल,
1: पैसा तो छीना झपटी करके छीना भी जा सकता है, ज्ञान कैसे वापस लेंगे? इसीलिए इतनी बड़ी चीज वो आपको दे रहा है कि जो वो खुद भी चाहे तो वापस नहीं ले सकता। तो पिताजी ने फॉर्म भर दिया गुरुजी की आज्ञा से और मैं फर्स्ट आ गया। और उस जमाने में साधना सरगम मेरे साथ कंपटीशन में बैठी थी गाने के लिए।
0: क्या बात है।
1: तो बंबई से हम दोनों ही फर्स्ट आ गए। साधना उन दिनों मेरी पुरानी दोस्त है, एक बहन की तरह है, और वो पंडित जसराज जी से सीखती थी, ये कई लोगों को मालूम नहीं है
0: जी।
1: तो हम दोनों फर्स्ट आ गए। तो उस जमाने में जो फर्स्ट आते थे उनका कार्यक्रम भी ऑल इंडिया रेडियो में रखा जाता था
0: जी।
1: हम लोग पहुंच गए और माधव राव इंदौरकर जी बहुत बड़े तबला वादक थे
0: जी जी।
1: तो माधव राव इंदौरकर जी ने मेरी संगत की
0: जी। किस आकाशवाणी केंद्र से आप ये फर्स्ट आए थे?
1: बॉम्बे से।
0: मुंबई से?
1: हाँ
0: जी।
1: मगर उस जमाने में कम से कम 15 से 20 बांसुरी वादक उसमें आए थे, जो कुछ मेरे से सीनियर भी थे। फिर भी मुझे पहला नंबर मिला
0: जी।
1: और वो मेडल ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथ से मिला
0: जी, जी।
1: मजे की बात ये है कि सुनने के लिए जो श्रोता लोग आए उसमें रविंद्र जैन भी आए।
0: क्या बात है। वाह।
1: और रविंद्र जैन जी, उनके बात करने की थोड़ी शैली मैं बता रहा हूँ, सुनो बड़ा अच्छा बजाया तू जरा मेरे पास। हाँ हाँ। वो तो सूरदास थे
0: जी,
1: तो हाँ बड़ा अच्छा बजाता है, कल मेरे रिकॉर्डिंग में आ जा
0: जी जी।
1: रिकॉर्डिंग के लिए पूरा बांसुरी का सेट होना चाहिए, 24 बांसुरी होने चाहिए कम से कम
0: जी जी।
1: उससे ज्यादा एक दो और भी बेस का हो तो अच्छा है। डी से डी तक जाएंगे और अगर क्रोमेटिक में जाए तो 7 स्वर नहीं है, 12 स्वर है। और डी के बेस से डी के मिडिल तक आइए, डी से मिडिल से लेके एकदम जो छोटी, जो कि 4-5 इंच की डी की छोटी, जिसको मुरली कहते हैं, वहां तक का बांसुरी कम से कम आप स्टूडियो में। मेरे पास तो 3-4 ही बांसुरी, वही लेके मैं पहुंच गया।
0: और स्वर सप्तक भी कुछ होते हैं, इतने स्वर सप्तक की बांसुरी होनी चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि जो डी बड़ा है वो मंद्र का है और डी से छोटी वाली वो मध्य है, और उसमें मध्य में जाएंगे जब ऊपर के साथ तो फिर तार सप्तक हो गया। 3 सप्तक की बांसुरियां आपके पास होनी चाहिए
0: जी जी।
1: वो कुछ नहीं मेरे पास। मैं तो पहुंच गया रेडियो जेम्स स्टूडियो और वहां मेरे भगवान गा रहे थे,
0: किशोर दा
1: गा रहे थे।
0: क्या बात है।
1: ना जाने जब कैसे मिल जाते हैं जैसे, ये गाना, पहली नजर में तुम मुझे भा गए, ऐसा दादा गा रहे थे कि मेरे आंखें से पानी निकलता जा रहा है कि ये स्वर का बादशाह जिसको मैं बचपन से सुन रहा हूँ वो लुंगी कुर्ता पहन के गा रहा है मेरे सामने
0: जी, जी।
1: वो बस जहां मैं बैठा हूँ आपके सामने, इतना छोटा स्टूडियो है रेडियो जेम्स
0: जी जी।
1: और मेरे पास जो बैठ के तारशानाई बजा रहे थे वो थे दुखी बाबू, इंडस्ट्री में उनको दुखी बाबू कहते हैं, पूरा नाम है दक्षिणा मोहन टैगोर
0: जी जी।
1: और मैं था इतना पतला दुबला कि आप कल्पेश को देख रहे हैं, ये भी मेरे सामने मोटा है
0: जी जी जी,
1: इतना पतला। आप मेरा फोटो किशोरदा के साथ देखेंगे तो मेरे वेबसाइट में है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे मेरा बेटा कोई है। तो वो दुखी बाबू मुझे बोले कि तू कौन है, और मेरे छाती को उन्होंने अपने हाथ से नापा, इतना बड़ा हाथ, बोले खाक तू बजाता कैसे है, तू खाना नहीं खाता है?
0: अरे
1: मैंने बोला मैं खाता हूँ, बंगाली में बोले खबर खास ना तो की शरीर रही अवस्था, पेट पूरा अंदर रहा और बहुत ही पतला था मैं। तो वो अपने घर ले गए, मछली चावल सब खिलाए, वो सोचे कि ये खाया ही नहीं है, हालांकि मैं तो खाया हुआ था मगर 17 साल के लड़के को तो फिर से खिलाओ तो फिर खा लेगा वो
0: जी जी,
1: मैं फिर खा लिया। वो एक होटल में रहते थे, उस होटल का नाम मुझे आज भी याद है, मानसरोवर होटल। बोले कल आ जा सुबह, तब 9 बजे का शिफ्ट होता था और मैं सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन का मेंबर तो था नहीं, तो मुझे फाइन भरना पड़ता था 10 रुपए उस जमाने में।
0: अच्छा, बहुत बड़ी कीमत थी 10 रुपए।
1: 10 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। वो रविंद्र जैन के वहां भी फाइन लिया मेरे से और 140 रुपए पेमेंट था, जो काफी था, ए ग्रेड का पेमेंट मुझे दिया, ना होते हुए भी बांसुरी से इतने खुश हुए। दुखी बाबू मुझे ले गया, पहली बार मैं फिल्म सेंटर में गया और वहां पे लता जी खड़ी है, अमित कुमार खड़ा है और 100-piece ऑर्केस्ट्रा और वो 40 वायलिन सिम्फनी की तरह और चेलो और डबल बेस, अपराइट बेस जिसको बोलते हैं
0: जी,
1: वो सब वेस्ट इंडियन जैसे दिखते जो हैं वो डबल बेस वही लोग बजाते थे, क्योंकि वो चेलो से भी और भी बड़ा साइज का होता है, खड़े खड़े जो बजाते हैं, बाद में बेस गिटार ज्यादा बजने लगा, पहले तो डबल बेस बजता था
0: जी जी।
1: और पंचम दा ने 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, पंचम हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा

0: से ठहाका लगाते थे देख किसको लाया हूं। तू बोलता था ना हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास टाइम नहीं है, वो क्लासिकल प्रोग्राम में बजाने लगे हैं आजकल, तब हरि जी भी नए थे और वो जो टाइम बचता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास चले जाते हैं
1: जी जी।
0: तो ये बांसुरी वाले में बांसुरी वाला ही लाया हूं मैं पंचमदा। वो फिल्म सेंटर में अंदर सचिन देव बर्मन का एक ऐसा गाल में दोनों हाथ रख के एक फोटो आज भी है, ले गए और मुझे बोले तुझे नोटेशन लिखना आता है बंगला में, बोले तू नोटेशन लिखते जानिस। आमी बोललाम हाँ दादा मैं जानता हूँ। तूने बैकग्राउंड म्यूजिक कभी बजाया है? मैंने बोला नहीं, मैं तो एक ही फिल्म में बजाया, वो कल बजाया था रविंद्र जैन का। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे राग खमाज आता है?
1: अरे।
0: बोले खमाज सुना दे। और जब मैंने बनारसी अंदाज से खमाज बजाया गले लगा लिए मुझे।
1: क्या बात है,

0: वाह, इसको कहते हैं साधक, साधना यही है।
1: ये है
0: जी।
1: तब मुझे उस दिन मालूम पड़ गया कि उनका फेवरेट राग खमाज है। बाद में जैसे जैसे मैं उनके साथ बजाने लगा तब मालूम पड़ा कि उनके आधे गाने तो खमाज में ही है
0: जी।
1: फिर उनके सिटिंग रूम मैरीलैंड उसमें हारमोनियम में खमाज बजाया, पंचम दाने और एक गाना तैयार। ऐसे खमाज के सिद्ध पुरुष थे वो
0: जी। जी
1: वो पीस जो पहला पंचम दाने मुझे दिया, याद आ रही है, मेरे बांसुरी से ही गाना शुरू होता है
0: जी।

0: Dang, dang, dang.
1: Kör vi. क्या बात है.
2: मैं कैसे बजाया मेरा मन ही जानता है, क्योंकि 24 फ्लूट मेरे पास थी नहीं. और उसको मैंने कुदरती गाने का जो सुर था, ये जो पीस है ये पंचम को साग करके ही बज सकता है अच्छा, क्योंकि उस तरीके का मेरे साह से बजाऊंगा तो नहीं आएगा.
1: जी जी.
2: मेरे अंदर ना डर नहीं था. अगर मेरे सामने लता जी खड़ी है तो मैं डर जाऊंगा, ये शुरू से नहीं था. जब ये पीस बजाया तो एक दिन में इंडस्ट्री में नाम हो गया.
1: क्या बात.
2: पंचम दा मेरे पास आए, बोले तेरा सेट कहाँ है. बोले नहीं है, सेट लिए बिना आना नहीं, पहले जाके खरीदो. तो उस जमाने में मैं उनको याद कर रहा हूँ, उन बड़े लोगों को, रामचंद्र धोत्रे साहब थे. उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे जैसे तू कमाएगा मुझे देना, पूरा सेट लेके जा. एक एक बांसुरी चुन चुन के, चुन चुन के, चुन चुन के, जो सुरीला था मैंने उठाया.
1: क्या बात है. वाह.
2: और पूरा सेट जाके बॉक्स बनवाया. और पंचम दा ने आरडी एफसी लिखते थे, आरडी बर्मन एफसी माने फिल्म सेंटर. महीने का 25 डेट मुझे मिल गया. मैं मुझे तो चांदी हो गई. अरे उस जमाने में महीने में 15,000 रुपए में कमाने लगा. तो पैसे का जो मुझे सहारा मिला फिल्म इंडस्ट्री से, पिताजी चिंतित हो गए कि अब इसका क्लासिकल कहीं छूट ना जाए, पैसे के पीछे लग गया है. मगर गलत साबित उनको मैंने किया. मेरी वाइफ भी जानती है, और उसके आने के बाद भी वो दौर मेरा जारी रहा.
1: जी जी.
2: जो 1980 से मैं रात को रियाज करता था. तो जो लोग कहते हैं कि सुबह का राग सुबह ही रियाज करना चाहिए, ये सब मैं मानता नहीं. रियाज जब भी करो उसका फल मिलता है.
1: जी.
2: रियाज में हम अपनी गलती सुधारते हैं, प्रोग्राम में फिर हम फाइन रेडी माल जाके पेश करते हैं.
1: जी.
2: एक बार माँ अन्नपूर्णा देवी, हमारी पहली गुरु माँ, रविशंकर जी की फर्स्ट वाइफ,
1: गान सरस्वती.
2: हाँ, गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी से किसी ने कहा कि आप प्रैक्टिस कब करती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा देवी बोली मेरा एक टाइम है, वो सुनना चाहती हूँ. तो बोले क्यों, तुम मेरा गंदगी देखना चाहते हो, शौक है तुमको, तब तो मैं अपनी सब बुराइयों को ठीक करती हूँ, तो वो क्यों सुनना चाहते हो. प्रैक्टिस इज ए लोनली एक्सपीरियंस.
1: बिल्कुल.
2: रियाज एक अकेले में करने की चीज है. जब तक आप डूबेंगे नहीं, एक लाइन मैंने लिखी है, तू अगर खुद को खो नहीं सकता उसका दीदार हो नहीं सकता, माँ तो व्याकुल है दूध देने को, दरअसल तू ही रो नहीं सकता.
1: क्या बात है.
2: तो आपसे गुजारिश है कि आज के एपिसोड में आप याद आ रही है लोगों को सुनवा दीजिए.
1: जी.

0: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर। हेलो एंड नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार अलवर में। और देखिए, मैं आप सभी का अपना दोस्त सावन कुमार एक बार फिर से लेकर के हाजिर हूँ आप सभी का ये अपना प्रोग्राम कार्यक्रम नमस्कार अलवर। साथियों, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, रेडियो प्रोग्राम्स का मजा ले रहे होंगे, अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया और सकारात्मक कर रहे होंगे। और अपने बारे में अगर मैं बात बताऊं तो मैं भी बहुत अच्छे से हूं और आप सबकी शुभकामनाओं के रहते हुए मैं अच्छे से क्यों नहीं रह सकता, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो साथियों, देखिए कार्यक्रम नमस्कार अलवर में हर रोज़ उसके हर एक एपिसोड के अंदर हम लोगों की ये कोशिश होती है कि हम आपके लिए कुछ नया लेकर के आए, कुछ ऐसे मुद्दों को उठाएं जिनसे कि आप और हम सभी जुड़े हुए हैं, जो हमसे रिलेट करते हैं, ऐसे मुद्दे जिनके बारे में बात करना आवश्यक है ताकि हम कुछ अपने जीवन के अंदर अच्छे काम कर सकें, कुछ सकारात्मक कर सकें, कुछ रचनात्मक कर सकें। तो देखिए साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं संकटग्रस्त वन्य जीव जो हैं उनकी प्रजातियां, जो कि हमारे भारत में ऐसे जीव जो विलुप्ति के कगार पर हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं, और उनके संरक्षण। तो ये जो वन्य जीव हैं इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से ये विलुप्त हो रहे हैं और इनके संरक्षण के अंदर हम लोग क्या भागीदारी निभा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में की जा सकती हैं, तो इसी चीज़ के बारे में आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करते हैं। तो साथियों देखिए, भारत जो है ना अपने जैव विविधता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। विश्व के कुल भूमि क्षेत्र की अगर बात करें ना, तो यहाँ का मात्र 2.4% हिस्सा होने के बावजूद भी वैश्विक जैव विविधता में भारत की हिस्सेदारी तकरीबन 7-8% तक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय के ठंडे पहाड़ों से लेकर राजस्थान के मरुस्थल, पश्चिमी घाट के सदाबहार जंगलों तक विविध प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं। हालांकि तेज़ी से जो औद्योगिक प्रगति हो रही है, जनसंख्या का विस्फोट है, मानवीय लालच है, इन सभी चीज़ों के कारण भारत की जो हमारी अनमोल वन्यजीव संपदा है वो बहुत गहरे संकट में है, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अनुसार भारत की कई महत्वपूर्ण प्रजातियाँ जो हैं वो विलुप्ति के कगार पर खड़ी हैं। इन संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना न केवल पर्यावरण के संतुलन के लिए बल्कि मानव जाति के अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है, हम सबकी ज़रूरत है, हम सबका स्वार्थ भी इसके अंदर निहित है, तो ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। अब साथियों बात आती है संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, यानी कि हम लोगों को कैसे मालूम पड़े कि संकटग्रस्त वन्य जीव जो हैं वो कितने संकटग्रस्त हैं, उनकी किस किस तरीके की कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या कैटेगरीज में डाला जाता है, क्योंकि हर जानवर को तो हम एक ही कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते। जो देखिए, जितना बाघ जो है विलुप्ति के कगार पर है, उतना आज हम देखें तो अन्य किसी जानवर के बारे में बात करते हैं तो वो उतना नहीं होगा। इसी तरीके से

अगर हम गोडावण पक्षी के बारे में देखते हैं तो वो तो पूरी तरीके से विलुप्त ही हो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करके अब बचाया जा रहा है। तो देखिए, इसके लिए वन्य जीव प्रजातियाँ जो होती हैं इनका वर्गीकरण किया जाता है। IUCN जीवों की स्थिति के आधार पर उनको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करता है। भारत में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में जो जीव हैं वो गंभीर रूप से प्रभावित हैं। सबसे पहला होता है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये वो प्रजातियां होती हैं जिन पर वन्य जीवों से पूरी तरह से विलुप्त होने का उच्चतम जोखिम मंडरा रहा है। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं जैसे कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुलावेसी भालू, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर आती है। इसी प्रकार से अब होती है संकटग्रस्त। इसके अंदर ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनकी संख्या में तेज़ी से गिरावट आ रही है और यदि इनका संरक्षण नहीं किया जाए तो ये जल्दी ही विलुप्त भी हो सकती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं रॉयल बंगाल टाइगर हो गए, एशियाई शेर हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो होता है वो होता है संवेदनशील, यानी कि जिनकी आबादी अभी तो ठीक ठाक है लेकिन उनके आवास नष्ट होने के कारण वो संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में आ भी सकते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है असम में पाया जाने वाला एक सींग वाला गैंडा। तो साथियों, इसके बारे में हम और भी आगे बात करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो साथियों, इस म्यूजिकल ब्रेक से पहले हम लोगों ने बात की कि भारत में जो संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, किस किस प्रजाति को, किस किस जानवर को, किस किस जीव को किस तरीके से ये माना जाता है कि वो संकटग्रस्त है, और संकटग्रस्त अगर है तो वो कितना संकटग्रस्त है। अब इसके बाद में साथियों नंबर आता है कि भारत की जो प्रमुख संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, भारत के अंदर कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो केवल इसी भूभाग में पाई जाती हैं और यहां पर उनके अस्तित्व का आखिरी ठिकाना है, तो उन्हें बचाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रॉयल बंगाल टाइगर की। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ एक समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शान से घूमता था, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। बीते शताब्दी में इनके अंधाधुंध शिकार के कारण और जंगलों की कटाई के कारण इनकी जो संख्या है वो महज कुछ हजारों में सिमट गई थी। हालांकि जो कड़े संरक्षण के प्रयास हैं उनकी वजह से इनकी स्थिति जो है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष जो होता है, यानी कि मानव और वन्यजीवों का जो संघर्ष होता है, वो आज भी इस प्रजाति के लिए एक सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरता है। इसके बाद साथियों दूसरे नंबर पर चीज आती है एशियाई शेर। विश्व में केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही एशियाई शेर जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। एक ही सीमित क्षेत्र में पूरी आबादी केंद्रित होने के कारण महामारी या फिर जंगल की आग जैसी जो आपदाएं होती हैं इन्हें एक ही झटके में समाप्त कर सकती हैं, तो इस वजह से इनका संरक्षण काफी आवश्यक हो जाता है। अब इसके बाद तो तीसरे नंबर पर आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये भारत की सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षियों में पाया जाता है। राजस्थान और गुजरात के घास के मैदानों में पाए जाने वाले इस विशाल पक्षी की संख्या अब 150 से भी कम बची है। हाई वोल्टेज के बिजली के तारों से टकराना और इनके प्राकृतिक आवास से इनके घास के मैदानों का कृषि भूमि में बदलना इनकी कमी का सबसे मुख्य कारण है। इसके बाद हम बात करेंगे एक सींग वाले गैंडे की। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से ये पाया जाता है और ये जीव अपने अनूठे सींग के लिए जाना जाता है। पारंपरिक दवाएं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसके सींग की भारी डिमांड के कारण इसका जो शिकार है वो बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, जिस वजह से आज ये बहुत ज़्यादा कम संख्या में बचा हुआ है। इसके बाद आता है हिम तेंदुआ। हिमालय के ऊँचे और दुर्गम कटीले पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले इस जीव को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। ये जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार से अत्यधिक खतरे में अभी प्रजाति जो है वो आ चुकी है। अब बात आती है कि वन्य जीवों के जो संकटग्रस्त होने के मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, कारणों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए ये गीत।

साथियों बात कर रहे थे वन्य जीव जो हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां कौन कौन सी हैं और भारत में इनके संरक्षण को लेकर के क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। और हमने बात की कि संकटग्रस्त जीव कौन कौन से हैं। अब बात आती है वन्य जीवों के संकटग्रस्त होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है, कारण के बाद ही निवारण जो है वो हो सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, भारत में वन्य जीवों के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने के पीछे बहुत सारे प्राकृतिक कारण भी हैं, बहुत सारे मानवीय कारण भी हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मानवीय कारण जो है ना वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है ना वो आता है आवासों का विनाश और विखंडन, यानी कि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान ने जंगलों को काट कर शहरों को बसाया, फैक्ट्रियां, बांध, राजमार्गों का निर्माण किया और लगातार किया जा रहा है। जब वन्य जीवों का घर ही छिन जाता है तो उनकी प्रजनन क्षमता, उनकी भोजन तलाशने की क्षमता प्रभावित होती है। दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो आती है अवैध शिकार और तस्करी, यानी कि बाघ की खाल, हड्डियां और इसी प्रकार से एक सींग वाले गेंडे का जो सींग होता है वो, हाथी का जो शिकार है वो उसके दांतों के लिए, कस्तूरी मृग की जो कस्तूरी है, ऐसी चीज़ों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों रुपए का जो काला बाजार है वो सक्रिय है और इन चीज़ों के लिए इन जानवरों का शिकार किया जाता है, इनकी तस्करी की जाती है। कड़े कानूनों के बावजूद भी शिकारियों का नेटवर्क आज भी सक्रिय है। इसके बाद में तीसरा जो कारण है वो आता है मानव और वन्य जीवों का संघर्ष। साथियों, जंगलों के सिकुड़ने के कारण भोजन और पानी की तलाश में बाघ हो गए, हाथी, तेंदुए अक्सर इंसानी बस्तियों का रुख करते हैं, इससे फसलों की बर्बादी होती है, पालतू पशुओं की मौत होती है और इंसानों पर हमले होते हैं, जिसके बदले में ग्रामीण अक्सर इन जीवों को जहर देकर के या फिर पीट पीट करके मार डालते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें जलवायु से संबंधित कारणों की, तो देखिए प्रदूषण और जलवायु का परिवर्तन जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। नदियों में जो फैक्ट्रियों का रसायन है उसको गिराने से जलीय जीव जैसे कि गंगा डॉल्फिन जो है वो बहुत संकट में है। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और हिम तेंदुए जो होते हैं, ऐसी प्रजातियों का अस्तित्व जो है वो गंभीर संकट में पड़ गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है ये संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं आज विलुप्ति के कगार पर आ रही हैं। लेकिन साथियों, अब हम बात करेंगे कि भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो भारत ने अपने वन्य जीवों को बचाने के लिए ऐतिहासिक और कानूनी कदम उठाए हैं। इनमें से प्रमुख प्रयासों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण वो कानून है जो शिकार, तस्करी, वन्य जीव उत्पादों के व्यापार, इन चीज़ों पर पूर्णतया प्रतिबंध को लगाता है। इसके तहत संकटग्रस्त जीवों को अनुसूची 1 में रखकर सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैविक विविधता अधिनियम सन 2002 भी इस दिशा में मील के पत्थर हैं। वहीं प्रमुख संरक्षण परियोजनाओं की बात करें तो उनके प्रमुख रूप से नाम जो हैं वो लिए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो सन 2009 में शुरू किया गया और प्रोजेक्ट गोंडावन जो है वो हालिया वर्षों में इस समय चल ही रहा है। तो ये सब जो प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत टाइगर, एलिफेंट, स्नो लेपर्ड और गोंडावन जो है जीव हैं, इनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। अब साथियों, संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। भारत ने जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने के लिए इन सीटू संरक्षण नेटवर्क का विस्तार किया। राष्ट्रीय उद्यान, इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है जहां मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य, जहां पर सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय

समुदायों के सह अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे संरक्षण में चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, भविष्य की राह क्या है। तो देखिए, इतने प्रयासों के बाद भी चुनौतियां हमारी जो है वो कम नहीं हुई है। वन्यजीव विभागों के पास में आधुनिक हथियारों और तकनीकों जैसे कि ड्रोन सैटेलाइट की ट्रैकिंग की कमी है। इसके अलावा कई बार विकास परियोजनाओं जैसे कि माइनिंग और फोर लेन हाईवेज वगैरह को पर्यावरण और वन्य जीवों के हितों के ऊपर प्राथमिकता भी देनी पड़ती है। अगर हम आगे की राह की बात करें तो सामुदायिक भागीदारी, वन्य जीवों का संरक्षण जब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि जंगलों के आसपास रहने वाले स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण इसमें शामिल ना हो, यानी कि उनकी भागीदारी होना आवश्यक है। उन्हें एक टूरिज्म से जोड़कर उन्हें रोजगार देना होगा ताकि वो जीवों को अपना दुश्मन नहीं समझे बल्कि मित्र समझे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर चीज आती है पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचा। जंगलों से गुजरने वाले हाईवे और रेलवे लाइनों पर अंडरपास और ओवरपास बनाए जाने चाहिए ताकि जीव जो हैं वो दुर्घटनाओं का शिकार ना हो। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि कठोर दंड की व्यवस्था। वन्य जीवों की तस्करी से जुड़े अपराधियों को फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए तुरंत और सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो साथियों, इसके बारे में और भी आगे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए ये गीत।

हैं, क्या क्या निवारण हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की। अब लास्टली जो चीज़ आती है ना, वो ये आती है कि संकटग्रस्त वन्य जीव जो है वो केवल प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व नहीं है, बल्कि वो उस जटिल खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। यदि एक भी प्रजाति विलुप्त होगी तो उसका असर सीधे पूरे पर्यावरण के चक्र पर पड़ेगा। भारत की समृद्ध संस्कृति हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम और प्रकृति पूजक रही है। आज समय की मांग है कि हम विकास और पर्यावरण के बीच में एक सही संतुलन को बनाएं और वन्य जीवों की सुरक्षा करें। और देखिए, वन्य जीवों की सुरक्षा करना वैसे भी हम सभी का कर्तव्य है। और तो साथियों, अपने अपने स्तर पर हर तरीके के जितने भी प्रयास आप कर सकते हैं कीजिए, और वन्य जीवों का संरक्षण कीजिए, और अपने जीवन के अंदर अच्छे अच्छे काम करते रहिए। अब देखिए, बातें तो करने का बहुत सारा मन है, हमेशा मन होता है, लेकिन अब ये घड़ी की सुइयां जो हैं वो फिर से इशारा करने लग रही हैं और बड़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही हैं। तो साथियों, अब वापस से एक बार बताना चाहेंगे आपको कि समय हो चुका है आप सभी लोगों से विदा लेने का प्रोग्राम में, और जा रहे हैं इसी वादे के साथ में कि एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात इसी प्रोग्राम में फिर किसी दिन और एक नए मुद्दे के साथ में। लेकिन तब तक के लिए अपने दोस्त सावन कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार अलवर। अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्कार अलवर, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको फिल्म संगीत।

0: जतिन ललित का संगीतबद्ध किया और प्रसून जोशी का लिखा ये गीत आपने सुना फिल्म फना से। आवाज दे रही शान कैलाश खेर और साथियों की।
1: हे गर्ल्स,
2: हाय, कांग्रेचुलेशंस।
1: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मेरे नाम फिल्म से ये गीत आपने सुना उदित नारायण और साथियों की आवाज में, शब्द रचना रही समीर की और संगीत से संवारने का काम किया हिमेश रेशमिया ने। और लीजिए फिल्म संगीत का ये अगला नगमा, सुनिए फिल्म गजनी से आवाजें हैं जावेद अली, सोनू निगम और साथियों की, संगीत दिया है AR रहमान ने और शब्द रचना है प्रसून जोशी की।

इब्राहिम अश्क का लिखा हुआ और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया ये गीत आपने सुना फिल्म कहो ना प्यार है से। आवाजें रही लकी अली रामिया और साथियों की। अली जी फिल्म संगीत का ये अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जब वी मेट से। आवाजें हैं मोहित चौहान और साथियों की। शब्द रचना है इरशाद कलमी की और संगीत दिया है प्रीतम ने।

जब भी मैच से ये गीत आपने सुना, मोहित चौहान और साथियों की आवाज में, शब्दोष्णा रही इरशाद कलमी की और संगीत दिया प्रीतम ने। और लीजिए फिल्म संगीत का ये अगला और आखिरी नगमा आपको सुनवा रहे हैं जेम्स और साथियों की आवाज में फिल्म वो लम्हे से। शब्दोष्णा है सईद काजरी की और संगीत से संवारने का काम किया है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहां पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहां पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।

0: पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
3: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के

0: द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है

0: कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपैटिबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे। ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई हुई गजलें।

अभी आपने सुना सुगम संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका।

0: स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ तो हम अक्सर महसूस करते हैं, लेकिन कंधों के स्वास्थ्य का बोझ कब बढ़ जाता है यह हमें दर्द होने पर ही समझ आता है। चलिए आज बात करते हैं कंधों के बारे में ही। सुनते हैं डॉक्टर अरुण सिंह से शिव कुमार की बातचीत।
1: आज का हमारा चर्चा का विषय है वो है फ्रोजन शोल्डर, यानी कि कंधों में जो दर्द होता है, कंधों में जो पेन होता है उसके बारे में है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम सीधे कनेक्ट होते हैं डॉक्टर अरुण सिंह से, जो कि जयपुर के जाने माने शोल्डर जॉइंट स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि कंधों के जोड़ विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर। आज का हमारा चर्चा का विषय है फ्रोजन शोल्डर। जैसा कि नाम से तो ये लगता है कि फ्रोजन शोल्डर यानी कि जो कंधा ऐसा है जो जम गया है, और यदि हम आपकी लैंग्वेज में जाने, मेडिकली लैंग्वेज में, कैसे आप इसको एक आम श्रोता को समझा पाएंगे कि क्या होता है फ्रोजन शोल्डर?
2: पहले सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं एक सीनियर कंधा रोग विशेषज्ञ हूं और पिछले काफी सालों से कंधे से संबंधित बीमारियों की लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का मैं काम कर रहा हूं।
1: जी,
2: तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सामान्य, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, कभी ना कभी कंधे में दर्द सभी के रहा होता है। वो जरूरी नहीं वो फ्रोजन शोल्डर या स्टिफ शोल्डर रहा हो, पर कंधे का दर्द बहुत ही आम है हमारी जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। तो अगर हम बात करें फ्रोजन शोल्डर की, वो क्या होता है, तो फ्रोजन मतलब होता है कंधे का जकड़ जाना, जिसको हम मेडिकल टर्म में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या स्टिफ शोल्डर बोलते हैं। तो एक ये बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती हैं। कंधा बहुत कारणों से जाम होता है, उसमें से सबसे कॉमनली जो हमको देखने में मिलता है वो होता है डायबिटिक स्टिफ शोल्डर, यानी कि जिन लोगों को मधुमेह है या डायबिटीज है उनके कंधों के अंदर दर्द या स्टिफनेस बहुत कॉमन होती है। अब ऐसा क्यों होता है? डायबिटीज के अंदर हम जानते हैं कि हमारा ब्लड शुगर जो है वो हाई हो जाता है, तो हमारा जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर है वो हमारे कंधे की जो मांसपेशियां हैं उसमें से जाकर एक बॉन्ड बनाता है जो कि बहुत स्टिकी, यानी कि वो गोंद जैसा होता है और हमारे कंधे के अंदर के मांसपेशियों को जाम कर देता है। तो ऐसे जॉइंट जो कि डायबिटिक के अंदर होते हैं स्टिफ, ये बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं और इनकी जो जकड़न होती है आम स्टिफ शोल्डर वाली जकड़न से भी बहुत ज्यादा होती है। तो दूसरी स्टिफ शोल्डर की बात करें तो स्टिफ शोल्डर कई बार हमारे चोट लगने की वजह से हो जाता है, कई बार हम गिर जाते हैं या हमारे हाथ में कोई झटका आ जाता है, उसके बाद से ही हमें दर्द होता है और कंधा जाम हो जाता है। कई बार कुछ ऑपरेशंस की वजह से हमारे कंधे जाम हो जाते हैं, जरूरी नहीं वो ऑपरेशन हमारे कंधे से रिलेटेड हो, हमारे जैसे बाईपास सर्जरी हुई है, हमारा कोई ब्रेन का ट्यूमर या उसकी सर्जरी हुई है, या फिर हमको कई बार लकवा स्ट्रोक जिसे हम बोलते हैं वो आया हो, या फिर हम किसी भी कारण से बिस्तर पे बहुत लंबे टाइम तक रहे हो जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा नहीं रही हो, तो उसमें भी कंधा जाम हो जाता है।
1: जी।
2: अगर महिलाओं की हम बात करें

0: तो महिलाओं के अंदर कॉमन कॉज होते हैं थायराइड की प्रॉब्लम, जो बहुत ही हाइपोथायराइडिज्म होता है उसके अंदर हमें कंधे के स्टिफ शोल्डर्स बहुत कॉमनली मिलते हैं।
1: जी
0: तो ये बीमारी जितनी ज्यादा हमारे समाज में है, इसका समाधान भी बहुत आसान है। पहले तो हमें ये समझना है कि हुआ क्यों है। अगर
1: जी
0: मान लीजिए कि ये शुगर की वजह से हुआ है, तो हमको पहले शुगर को अपने बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। अगर ये थायराइड की वजह से हुआ है, तो हमको उसका ट्रीटमेंट करना है।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि ये दूसरे जो रोग होते हैं उनका ये साइड इफेक्ट्स की वजह से ऐसा होता है?
0: जी, इसमें देखिए लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्टिविटी होती है। हम बार बार ये कहते हैं कि आप किसी भी उम्र के हों, अपने आप को फिजिकली फिट रखें, अपने हाथ के ज्वाइंट के मूवमेंट्स को लगातार करते रहें। हम देखते हैं अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग पार्क में जाते हैं, वहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां पे भी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो जो एक्टिव रहते हैं उनके जोड़ कम जाम होते हैं। जो कि डेस्क जॉब में है, फिजिकली एक्टिव नहीं है, जो घर पे ही रहते हैं, बहुत ही कम उनका हिलना डुलना या एक्सरसाइज रहती है, उनके कंधे बहुत जल्दी जाम होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपने जोड़ों को बहुत एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व रखना है, अपनी एज के अकॉर्डिंगली। बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं होती है, पर सिंपल स्ट्रेचिंग और रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज हमको करते रहना होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, जब हड्डियों के जोड़ों की बात होती है तो अर्थराइटिस की भी बात होती है, तो अर्थराइटिस और इसमें क्या कोई सिमिलैरिटी है या दोनों अलग बातें हैं?
0: देखिए अर्थराइटिस जो है वो जोड़ों का खराब हो जाना हम बोलते हैं। अर्थराइटिस मतलब अर्थ मतलब ज्वाइंट, आइटिस मतलब उनके अंदर सूजन आना।
1: जी
0: तो कंधा एक ऐसा जोड़ है जो अर्थराइटिस से बहुत बचा हुआ ज्वाइंट है। अगर हम कूल्हे की बात करें, घुटने की, टखने की, कहीं की ज्वाइंट की बात करें, तो वहां पे अर्थराइटिस ज्यादा कॉमन है। कंधे में अर्थराइटिस बहुत कम होता है, और जो स्टिफ शोल्डर होता है वो बेसिकली वहां की मांसपेशियों के या उसके कैप्सूल के टाइट होने की वजह से होता है। इसके अंदर जो ज्वाइंट होता है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है, जो कि अर्थराइटिक ज्वाइंट में होता है।
1: जी
0: पर कई बार हमें ये मिलता है कि अर्थराइटिस शोल्डर में स्टिफनेस मिलती है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका ये है, अगर आप कंधे के एक्सरे कराते हैं, कंधे के एक्सरे आपके नॉर्मल आते हैं, आप अर्थराइटिस को और एक सिंपल स्टिफ शोल्डर को बहुत आसानी से अंतर कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अमूमन कई बार ऐसा होता है, हमने बहुत से लोगों को बात करते भी सुना है कि जब वो रात को सोते हैं तो जब वो करवट लेते हैं तो उनका जो कंधा है वो दर्द करता है, उनसे करवट नहीं ली जा सकती, तो क्या ये एक आम बात है या ये एक फ्रोजन शोल्डर का ही एक नतीजा है?
0: देखिए शोल्डर की कोई भी कंडीशन होती है, और स्पेशली स्टिफ शोल्डर, जब कंधा जाम होता है, उसके बहुत टिपिकल से प्रेजेंटेशन होते हैं। उसके अंदर आपको रेस्ट पेन होते हैं, जब भी आप एक्टिव होते हैं, अपने दिनचर्या में व्यस्त होते हैं या कामकाज में व्यस्त होते हैं, जब उसमें दर्द नहीं होते हैं, जब आप शाम को बैठे होते हैं, टीवी देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं, जब आपको दर्द होने शुरू हो जाते हैं, और ये दर्द रात को बहुत बढ़ जाते हैं, वो चाहे आप सीधे सो रहे हो तब भी बढ़ते हैं, और स्पेशली आप जिस साइड में आपको ये स्टिफ शोल्डर है उस करवट को लेने में आपको बहुत ही परेशानी होती है, और किसी कारण से भी ये हाथ हिल जाए या टकरा जाए तो आपको कई घंटों तक उसमें आराम नहीं आता। तो ये जो पेन होते हैं ये बहुत ही टिपिकल होते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण शोल्डर के दर्द का ये भी है, तो उसके अंदर कंधे में दर्द नहीं होता है, उसके अंदर हमारे बाजू के बीच वाले हिस्से में दर्द होता है। अगर हम कंधे और कोहनी के बीच का हिस्सा जो हम लेते हैं बाजू का, वहां पे अक्सर लोग हाथ पकड़ के मसाज करते हुए या मसलते हुए हमें पाए जाते हैं कि वहां पे हमको दर्द होता है। डॉक्टर साहब कंधे में तो इतनी दिक्कत नहीं रहती है, पर ये हमारे को बहुत परेशान करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जब किसी व्यक्ति का जो कंधा है वो जकड़ जाता है, जिसको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो फिर आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचते हैं कि भाई ये विकार आपको हो गया है और ये किस डिग्री का है, मतलब अभी अभी शुरुआत हुई है, इसके बाद क्या हो सकता है, तो ये आप कैसे पता करते हैं? पहली नजर में किसी व्यक्ति को जब आप मिलते हैं, उससे बात करते हैं, वो अपनी समस्या बताता है, तो आप ये कैसे बताते हैं कि भाई आपको ये समस्या है?
0: देखिए पहले तो हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, यानी कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, या आपका कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, या आपकी है फिजिकल एक्टिविटी या लेवल किस तरह का रहा है। फिर ड्यूरेशन पूछते हैं कि कितने टाइम से आपको ये दिक्कत है। तो फ्रोजन शोल्डर हमेशा बहुत लंबे ड्यूरेशन की परेशानी नहीं होती है, एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जो कि एक टाइम के बाद अपने आप ही रिजॉल्व होती है, पर इसका पीरियड एक साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। तो शुरुआती दौर में इसमें दर्द से शुरुआत होती है, अगर हम पहली स्टेज की बात करें तो दर्द होना शुरू होता है। सेकेंड स्टेज जो होती है इसकी फ्रीजिंग स्टेट होती है, जिसमें कंधे का जाम होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सामान्य सी बात है, अगर दर्द होता है तो आदमी उस हाथ को काम में कम लेता है और वो जाम होने लग जाता है। तीसरी जो स्टेज है वो थॉइंग स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर वो धीरे धीरे रिजॉल्व होती है और कंधे में इम्प्रूवमेंट आने लग जाता है। तो हमारा जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो इसी पर फोकस होता है कि हम इस साइकिल को जल्दी से जल्दी ब्रेक करें, और आदमी की जो पेशेंट की डिसेबिलिटी है वो इतने लंबे टाइम तक नहीं कैरी ऑन हो और वो जल्दी रिलीव्ड हो जाए। इसको मालूम करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके अंदर जो टिपिकल सा सिम्टम है वो होता है

0: रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑल द मूवमेंट्स एक्टिव और पैसिव। इसका मतलब ये होता है सामान्य भाषा में, आप अगर खुद से हाथ को उठाते हो या चलाते हो या घुमाते हो तो वो नहीं चलता है, अगर दूसरा भी आपके हाथ को पकड़ के घुमाने की चलाने की कोशिश करता है तो उससे भी नहीं होता है, यानी कि आप भी नहीं कर सकते हैं, दूसरा भी नहीं कर सकता है, इसका मतलब आपका कंधा स्टिफ हो गया है।
1: जी डॉक्टर साहब, जब किसी व्यक्ति को ये हो जाते हैं, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो क्या ये गंभीर माना जा सकता है या ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं?
0: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमको बहुत अर्ली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि शोल्डर की स्टिफनेस एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो आपको दिनचर्या के काम करने में, स्पेशली आपकी रात की स्लीप जो है उसको बहुत डिस्टर्ब करता है। तो आदमी बहुत ही मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है दर्द की वजह से और एक अच्छी नींद नहीं लेने की वजह से। तो इसको हम शॉर्ट करते हैं क्योंकि एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, पर ये कई बार बहुत लंबा टाइम लेती है, स्पेशली डायबिटिक जो लोग होते हैं उनके अंदर। तो इसके ड्यूरेशन को अगर हमको 4 to 6 weeks करना है, यानी कि 1.5 महीने में इसको हमको ठीक करना है, हमको इसको इंटरवीन करना पड़ता है, यानी कि इसके ट्रीटमेंट को हमें जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना होगा।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, इसके डायग्नोज की बात करें कि आप कैसे इसकी जांच करते हैं, कौन कौन से ऐसे फिजिकल जांच ऐसी होती है जिसके माध्यम से आप और अधिक गहराई तक जाते हैं कि इसको क्या हो गया है?
0: देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बहुत इजीली मालूम पड़ जाता है। अगर हम पेशेंट के हाथ के मूवमेंट टेस्ट करते हैं, उससे करवा के देखते हैं और फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, तो ये बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि कंधे की कौन सी बीमारी से हम डील कर रहे हैं, यानी कि स्टिफ शोल्डर से अगर हम डील कर रहे हैं तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसके अंदर 100% एक्यूरेट होता है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, अगर पेशेंट को थायराइड है या डायबिटीज है, और कई बार हम लोगों ने डायबिटीज डायग्नोज किया है स्टिफ शोल्डर से, हमने पेशेंट को डायबिटीज कराने के लिए बोला और वो डायबिटिक निकले क्योंकि उनको पहले कभी डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं थी, तो ये ब्लड टेस्ट होते हैं। और अगर हम इन्वेस्टिगेशन बाकी बात करें तो एक्सरे कराने हैं आपको सिंपली, और कुछ नहीं कराना है आपको। बहुत महंगी इन्वेस्टिगेशन जो सीटी स्कैन या एमआरआई कराने का शुरुआत में जरूरत नहीं होता है, आपको केवल एक एक्सरे कराने हैं जिससे आपके कंधे के बारे में ये पता चले कि उसमें कहीं आर्थराइटिस तो नहीं है जिसको हम स्टिफ शोल्डर समझ रहे हैं। अगर कंधे के एक्सरे नॉर्मल है तो हम उसको स्टिफ शोल्डर की तरह ट्रीट कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हम एक्सरसाइज की बात करें तो किस प्रकार से इनको हिला डुलाना चाहिए, किस तरह से हम व्यायाम के द्वारा ऐसी कोशिश करें कि ये जो जकड़न है ये आए ही नहीं हमारे कंधों में, तो इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आप रिकमेंड करते हैं?
0: देखिए, हम बात करें पहले तो प्रिवेंशन की, देन हम बात करेंगे क्योर की। तो प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको ये बताया कि अपने जॉइंट के मूवमेंट्स को आप बना के रखें, यानी कि उसकी सिंपल जो एक्सरसाइज है, चाहे हाथ को उठाना हो चलाना हो, बहुत ही जेंटल वे में करना है। कभी भी कोई हैवी वेट्स उठाना या कोई भी जर्की मशीन के साथ काम करना नहीं करना है। हम बहुत ही स्मूथली उसको स्ट्रेच करें, उसको रोटेट करें, और हमें कहीं भी लेवल पे लगता है यह हमको पेन कर रहा है या हमको जकड़न दे रहा है तो उसको पुश नहीं करना है आपको। हमेशा पेन फ्री मूवमेंट्स करें, दर्द की कंडीशन में आप एक्सपर्ट की सलाह लें, उसके बाद ही अपनी एक्सरसाइज को कैरी ऑन करें। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर किसी को स्टिफ शोल्डर है तो बहुत ही सिंपली वो ट्रीट होता है, उसमें आपको एक्टिव और पैसिव, यानी कि आपको खुद से भी एक्सरसाइज का प्लान बनाना है और आपको कुछ फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज कराने के लिए आपको या तो जाना पड़ता है या वो आते हैं आपके पास, उनकी हेल्प ले सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से ट्रेन कर देंगे कैसे आप अपने घर पे रहकर भी उन एक्सरसाइज को इजीली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन 4 to 6 weeks लेती है ठीक होने में। तो अगर आप नियमित रूप से इसको स्टिफ शोल्डर वाले पेशेंट एक्सरसाइज करते हैं तो वो 100% क्योर हो जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, अब संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे चलते चलते हमारे श्रोताओं को?
0: एक मैं बहुत यूजफुल टिप देना चाहता हूँ, बहुत बार लोग पेन नहीं मैनेज कर पाते हैं, कंधे का जो दर्द है उसका बहुत ही डिसेबिलिटी होती है, बहुत परेशान होते हैं, तो इसके लिए बहुत स्पेसिफिक इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो लोगों के अंदर बहुत भ्रांति है इस चीज को लेकर कि इंजेक्शन नहीं दिए जाते हैं, और इंजेक्शन कई बार स्टीरॉयड के होते हैं तो स्टीरॉयड नहीं लेना चाहिए, हम लोग डायबिटिक है तो हमें स्टीरॉयड का सेवन नहीं करना है। तो ये स्टडीज कहती हैं और वर्ल्ड वाइड डेटा ये कहता है कि स्टीरॉयड बहुत ही हार्मलेस होते हैं, ये किसी भी तरह के डायबिटीज में या किसी भी बीमारी में हार्मफुल नहीं होते हैं, ये आपकी स्पेसिफिक लोकेशन पे काम करते हैं और वहीं पे उसको पेन को या स्टिफ शोल्डर को रिलीफ दे देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसके अंदर आपको जो डायबिटीज है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है और उसकी जांचें रेगुलरली करानी है।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना, हम बात कर रहे थे डॉक्टर अरुण सिंह से जो कि जयपुर के जाने माने शोल्डर ज्वाइंट स्पेशलिस्ट यानी कि कंधों के जोड़ विशेषज्ञ हैं। कंधों के जोड़ से जो परेशान है वो आज की इस बातचीत को सुनकर बहुत ही राहत में भर गया होगा, हमें उम्मीद है कि उनको काफी फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आपने टेलीफोन लाइन के जरिए हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: श्रोताओं, जब कार्यक्रम

0: तो सर क्या होता है ये डिसलोकेशन, ये किस तरह से इसकी लोकेशन क्या होती है कंधे की, पहले तो इसको समझाते हुए सर ये बताएं कि डिसलोकेशन यानी कि कंधे का उतर जाना किसे कहा जाता है।
1: देखिए कंधा जो जोड़ है वो हमारे शरीर का सबसे मोबाइल यानी कि सबसे ज्यादा चलायमान जोड़ है, जो कि सबसे ज्यादा मूवमेंट देता है और बहुत अच्छे से घूमता है। तो हम अगर कहें जो चीज ज्यादा घूमती है, जो ज्यादा अच्छी चलती है, उसके डिसलोकेशन के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। तो कंधा जो जोड़ है वो डिसलोकेशन बहुत बार मामूली सी चोट से भी डिसलोकेट हो जाता है, और कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या खेल कूद में लगी चोट की वजह से भी डिसलोकेट हो जाता है। इसके अंदर जो कंधे की जो बॉल होती है वो अपने सॉकेट से निकल जाती है, और जो कंधे के आसपास की मांसपेशियां होती हैं उसको फाड़ते हुए वो अटक जाती है। तो इसे बोलते हैं हम शोल्डर डिसलोकेशन, जो कि बहुत बार तो मरीज के खुद के प्रयास से भी अपनी जगह रिलोकेट हो जाता है, और ज्यादातर ये किसी डॉक्टर के हेल्प से ही अपनी जगह पर बैठ पाता है। और ये बहुत ही पेनफुल यानी कि बहुत ही दर्द वाली स्थिति होती है, और अनबेरेबल यानी कि असहनीय दर्द होता है इसके अंदर
0: जी।
1: और इसको हम कैटेगराइज करें तो ये दो तरह के लोगों के अंदर अमूमन मिलता है, एक 40 साल से कम के लोगों के अंदर, एक 40 साल से ज्यादा के लोगों के अंदर
0: जी।
1: तो हम अगर यंग लोगों की बात करें जो 40 साल से कम उम्र के हैं, उनके अंदर जो शोल्डर डिसलोकेशन होता है वो प्योर शोल्डर डिसलोकेशन होता है, यानी कि कंधे का उतर जाना मांस को फाड़ के खाली वही होता है, उसके साथ कोई फ्रैक्चर या कोई और साथ में मांसपेशियों का फटना नहीं होता है। वहीं हम बात करें 40 साल से बाद के लोगों के अंदर डिसलोकेशन में, तो वहां पर डिसलोकेशन के साथ फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं
0: जी।
1: और साथ में जो मांसपेशियां डिसलोकेशन में फटती हैं उसके साथ साथ उनके जो कंधे को चलाने वाली मांसपेशियां जिनको हम रोटेटर कफ टेयर मसल्स बोलते हैं वो भी फट जाती हैं। तो 40 साल के बाद जो होती हैं वो इंजरीज और भी ज्यादा सीवियर होती हैं, और 40 साल से कम जो यंग लोग हैं उनके अंदर एक सिंपल डिसलोकेशन होते हैं
0: जी। डिसलोकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक ही प्रकार का डिसलोकेशन होता है या इसमें आप इसको कुछ वर्गीकरण किया हुआ है आप?
1: देखिए इसमें दो तीन तरह के डिसलोकेशन होते हैं, एक एंटीरियर डिसलोकेशन आगे की तरफ, एक पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ, एक इंफीरियर डिसलोकेशन नीचे की तरफ। पर इसमें जो 90% से ज्यादा केसेस जो आते हैं वो एंटीरियर डिसलोकेशन के आते हैं, यानी कि हाथ का पीछे जाने की वजह से हमारा जो शोल्डर है वो आगे की तरफ डिसलोकेट हो गया है। तो इसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है, अगर किसी भी व्यक्ति का एक बार डिसलोकेशन हुआ है और उसको अपनी जगह सेट कर दिया गया है तो वो 99.9% कई बार ठीक हो जाता है
0: जी।
1: पर ज्यादातर पेशेंट अगर जिनको दो या दो से ज्यादा बार डिसलोकेशन हो गए हैं उनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एक बार उसकी हीलिंग हो जाती है, वो जुड़ जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर वो दोबारा डिसलोकेट हो जाता है किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी 3 महीने 6 महीने साल भर के भीतर, तो उसके वापस से रिलोकेट या डिसलोकेट वापस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यंग लोगों के अंदर ये चीज ध्यान रखने की होती है, अगर आपके डिसलोकेशन एक बार हुआ है तो हम उसको बिना किसी

0: ऑपरेशन के या बिना किसी ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, पर अगर वो कंधा बार बार उतर रहा है तो एक ये सीरियस कंडीशन
1: जी। तो सर हमने घुटने के जो जोड़ है उसका डिसलोकेशन के बारे में काफी कुछ सुना है कि एक बार जिसका डिसलोकेट हो जाता है तो फिर वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है, और इसी तरह से क्या कंधे पर भी ये लागू होता है कि एक बार जिस व्यक्ति का अगर डिसलोकेट हो गया कंधा तो फिर वो एक तरह से वो फ्रीक्वेंटली बार बार उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है?
0: जी बिल्कुल, जैसे हमने कैटेगराइज किया 40 साल से पहले और 40 साल के बाद, तो 40 साल के बाद में जो हमने देखा कंधे डिसलोकेट होते हैं वो फ्रैक्चर के साथ या दूसरी मांसपेशियों को फाड़ के होते हैं। तो जो 40 साल से कम वाले लोगों के अंदर डिसलोकेशन होते हैं इनमें हमने देखा है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है रील डिसलोकेशन की, यानी कि उनको बराबर होते रहते हैं 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार। तो ऐसे यंग लोग जिनके अंदर डिसलोकेशन बार बार हो रहा है उनको इसको बहुत थरली इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जितनी बार आपका डिसलोकेशन होता है आपकी दोनों जो जोड़ की हड्डियां होती हैं वो आपस में घिसती हैं, खराब होती हैं, आर्थराइटिस होने के और मांसपेशियों के खराब होने के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं।
1: जी तो सर आपने जैसे बताया था कि एंटीरियर, इसी तरह से आपने पोस्टीरियर और इंफीरियर के बारे में भी बताया, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे।
0: देखिए एंटीरियर का मतलब ये होता है कि कंधे का जो बॉल होती है वो आगे की तरफ आ गई है, इसको एंटीरियर डिसलोकेशन बोलते हैं, और कटोरी अपनी जगह पे ही रहती है। यहाँ पे अगर पोस्टीरियर बोले तो वही बॉल अगर हमारी पीछे चली जाती है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, और अगर हमारी कंधे की बॉल जो है वो अगर नीचे की तरफ आ जाती है उसको हम इंफीरियर डिसलोकेशंस बोलते हैं।
1: जी अब एक सवाल हमारे मन में ये आता है साहब कि डिसलोकेशन किन कारणों से होता है, क्योंकि व्यक्तियों के सब जो कंधे होते हैं वो सभी व्यक्तियों के तो डिसलोकेट नहीं होते हैं, तो कोई खास कारण ऐसे होते होंगे शरीर में या कुछ ऐसी क्रियाएं की होंगी जिसकी वजह से डिसलोकेशन होते हैं? क्योंकि आप
0: देखिए डिसलोकेशन होने का, हाँ जी जी, डिसलोकेशन होने का सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण हमको मिलता है वो हाइपरलेक्सिबिलिटी, यानी कि शरीर के अंदर अगर किसी व्यक्ति के एक्स्ट्रा लचीलापन है, हाइपर फ्लेक्स है, तो इन लोगों के डिसलोकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ना केवल कंधे में बाकी जोड़ों की में भी चोटें लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिनका शरीर लचीला है तो वो ये ना समझें कि हमारे को चोट लगने के चांसेस कम है, अमूमन यही सोचा जाता है कि ज्यादा लचीलापन हमारे लिए फायदेमंद है, पर उनको कंधे डिसलोकेशन की समस्याएं ज्यादा मिलती हैं। दूसरे आते हैं हमारे खिलाड़ी वर्ग जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी में ये कंधे बार बार डिसलोकेट होते हैं, क्योंकि वो चोट में कुछ ऐसी पोजीशन में या कुछ ऐसी इंजरी में फंस जाते हैं। तीसरा हमारे यहाँ जो मुख्य कारण बनता है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हमारी बाइक से गिरने की वजह से या किसी और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हमारे कंधे डिसलोकेट होते हैं। तो हमारे यहाँ तीन मुख्य कारण है, बिना किसी चोट के हाइपर जो लचीले लोग हैं उनके अंदर, बाकी खिलाड़ियों के अंदर और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर हमको ज्यादा से ज्यादा शोल्डर डिसलोकेशन देखने को मिलता है।
1: डॉक्टर साहब कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो थ्रो ज्यादा करते हैं, जैसे थ्रो वाले जो भी गेम्स या इवेंट्स होते हैं तो क्या उसमें इनकी संभावना ज्यादा होती है?
0: जी थ्रोइंग एथलीट के अंदर हमेशा हमें कंधे की समस्याएं ज्यादा मिली हैं, चाहे वो कंधे का दर्द हो, रोटेटर कफ टेयर हो या कंधे का डिसलोकेशन हो, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्रो करने के अंदर हमारे कंधे ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है क्रिकेटर्स में, जैवलिन थ्रोअर्स में, डिस्कस थ्रो करने वालों में, इवन जो कबड्डी प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत कबड्डी खेली जाती है, तो कबड्डी के प्लेयर में भी बहुत ये कंधे की समस्याएं मिलती हैं। तो ऐसे खिलाड़ी इसको इग्नोर ना करें, इसको टाइमली अपनी इन्वेस्टिगेशन करा के इसको ट्रीटमेंट लें।
1: जी तब सब जैसे कोई खिलाड़ी जैसे आपने बताया कि जो थ्रो इवेंट्स होते हैं उसके जो खिलाड़ी होते हैं या एक्सीडेंट से कोई गिर गया है, तो इस वजह से यदि कंधे में कभी दर्द महसूस हो तो इसका ऐसा कौन सा मोटा लक्षण देखकर बताया जा सकता है कि भाई कंधे का जो है वो डिसलोकेशन हो गया, कंधा उतर चुका है?
0: देखिए कंधे का डिसलोकेशन बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सी फीचर है, उसके अंदर कंधा बाहर की तरफ निकल जाता है और मरीज को बिल्कुल पता चल जाता है कि कोई बड़ा इवेंट हुआ है, यानी कि उसका कंधा अपनी जगह से जगह छोड़ चुका है। तो वो क्या होता है उसको या तो अपनी जगह रिलोकेट नहीं कर पाता है, या फिर उसका हाथ जो होता है कहीं भी मूवमेंट नहीं शो करता है, ना वो ऊपर उठता है ना वो घूमता है, और असहनीय दर्द होता है उसके अंदर। कंधे में छोटा मोटा दर्द होना डिसलोकेशन की निशानी नहीं होता है, अगर आपको असहनीय दर्द हुआ है और आपकी बॉल आपको ऐसा लगता है कि अपने कंधे को छोड़ के कहीं चली गई है तो आपको असहनीय पेन होता है। ये जनरली पहली बार जब शोल्डर डिसलोकेशन होता है ये बहुत ज्यादा होता है पेन, अगर किसी को रिकरेंट डिसलोकेशन होते हैं तो वो या तो अपने आप ही उसको बैठा लेता है, सेट कर लेता है, या फिर उसकी पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो टाइम के साथ कम होने लग जाती है।
1: डॉक्टर अरुण कई बार व्यक्तियों के जब कंधे जो डिसलोकेट हो जाते हैं तो कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, तो क्या अपने आप भी जो डिसलोकेटेड शोल्डर होते हैं वो ठीक हो जाते हैं?

0: देखिए, मैंने ये बताया कि 1% जो डिसलोकेशन है, 1% को मैं बोलूंगा कि वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, पर शोल्डर डिसलोकेशन ऐसी समस्या है जो कि रिकरेंट होती है, यानी कि कंधा एक ऐसा जोड़ है जो बार बार बार बार डिसलोकेशन देता है। तो 40 साल से ऊपर के लोग हैं जिनके अंदर हमें लगता है कि कंधा डिसलोकेट हुआ है, बाकी चीजों में नुकसान नहीं हुआ है, वो ज्यादा अच्छा करते हैं। पर 40 साल से कम उम्र के जो कि एक्टिव लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हैं चाहे किसी और एक्टिविटी में हैं, वो सारे लोग जो है वो बार बार कंधा उतरने की समस्या से पीड़ित रहते हैं। तो ये कंधे का बार बार उतरना ये इंडिकेशन बनाता है कि ये अपने आप ठीक नहीं होने वाली समस्या है, इसको हमको सर्जरी से, जो कि आजकल बहुत ही एडवांस हो गई है, दूरबीन की सर्जरी से इसको फिक्स कर दिया जाता है। और वो इतनी अच्छी सर्जरी है, आदमी पूरे अपने चाहे खेल हो चाहे अपने बोझ भार के काम हो, खेती बाड़ी के काम हो, कोई भी काम वो आराम से पहले जैसा कर सकता है।
1: जी, आपने सर्जरी की बात कही सर, तो सर्जरी की जो सर्जरी की बात कब आती है? क्योंकि वैसे तो लोकेट करने की कोशिश की जाती है, अपने आप भी हो जाते हैं, तो आप ये तय कैसे करते हैं कि भाई अभी इसको सर्जरी की जानी है तभी इसका जो कंधा है वो ठीक हो पाएगा?
0: देखिए, सर्जरी हमेशा पहले एपिसोड के अंदर नहीं की जाती है। अगर डिसलोकेशन होता है और अगर उसकी कोई फ्रैक्चर नहीं है या बाकी मांसपेशियां उसकी सही सलामत है, तो पहले एपिसोड के बाद कभी सर्जरी नहीं की जाती है। हम उसको देखते हैं। इवन कुछ लोग जो होते हैं दूसरे एपिसोड के बाद भी सर्जरी नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद हम इससे ठीक हो सकते हैं। पर अगर दो या दो से ज्यादा बार अगर आपका शोल्डर डिसलोकेट होता है तो 100% ये चांसेस बन जाते हैं कि आपका तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ये शोल्डर डिसलोकेट होगा। वहां पर सवाल आ जाता है कि अब हमको डिसीजन लेना होगा, क्योंकि इससे हमारे कंधे के जोड़ खराब हो रहे हैं, मांसपेशियां खराब हो रही हैं, हमारे मन के अंदर डर बैठता जा रहा है अपने हाथ को काम में लेने में कि कहीं ये डिसलोकेट तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आती है और फिर उसके बाद सर्जरी का सवाल आता है।
1: सर्जरी में कितना वक्त लगता है और उसके बाद सामान्य अवस्था में आने में, कंधे का सामान्य हो जाने में कितना वक्त लगता है?
0: देखिए, सर्जरी बहुत ही एडवांस हो गई है आजकल। जैसे मैंने आपको बताया, दूरबीन से सर्जरी होती है, केवल 2 या 3 छेद से ये पूरी सर्जरी की जाती है। अगले दिन से ही मरीज आराम से कसरत कर सकता है, नहा सकता है, अपने काम कर सकता है, चाहे कपड़े पहनना, खाना पीना। 4 से 6 हफ्ते में, यानी कि 1 से 1.5 महीने में वो अपने सारे रूटीन के काम, ऑफिस जाना, बाकी ड्राइविंग करना, वो सारी चीजें वो बहुत आसानी से कर सकता है। खिलाड़ी को खेलने के लिए हम 3 महीने का समय लेते हैं जब तक उसको एक्सरसाइज करनी होती है, पर ये पेनलेस सर्जरी होती है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं।
1: जब सर, कई बार ऐसा भी देखा गया है अपने बचपन में भी और अभी भी हम देखते हैं, कई बार जब शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है तो उसको पता नहीं होता कि शोल्डर डिसलोकेट हुआ है या दर्द हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो उसमें मसल दिया जाता है, उसको तेल लगाकर या अन्य किसी चीज के साथ उसका उसको मसला जाता है, तो सर मसलना कितना उचित है?
0: देखिए, मसाज तो किसी भी एक्यूट इंजरी के अंदर इंडिकेटेड नहीं होती है, चाहे वो घुटना हो, कोहनी हो, कंधा हो। मसाज क्या करती है, उस जॉइंट के अंदर और इरिटेशन करती है और उसको बाद में जाम करने में या उसको परेशान करने में मदद करती है। तो वो आपको अगर तुरंत कुछ करना है तो सबसे पहले एक्सरे करा के देखना है। एक्सरे में हमें ये पता चल जाएगा कि सारी हड्डियां, हमारे सारे जॉइंट जो है वो कई जगह पे है कि नहीं है, डिसलोकेशन है कि नहीं है, या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप कुछ मेडिसिन से, और शुरू शुरू में बर्फ की सिकाई, ना कि गर्म सिकाई या कोई मसाज करना, आप बर्फ की सिकाई करें, अपने शोल्डर को थोड़ा आराम दें, कुछ मेडिसिन लें। अगर आपको लगता है कि वो दर्द कम होता जा रहा है तो आप उसी ट्रीटमेंट को फॉलो करें। अगर दर्द की इंटेंसिटी बढ़ रही है या आपको हाथ चलाने में तकलीफ हो रही है, फिर उसके बाद MRI स्कैन होता है, एक बहुत ही एडवांस इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि खाली ज्वाइंट बोन्स के अलावा मसल्स और बाकी चीजों को भी बहुत अच्छे से बताती है, उसको कराना होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें शोल्डर डिसलोकेशन यानी कंधे के उतर जाने के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमें उम्मीद है कि बहुत से हमारे श्रोता ऐसे होंगे जिनके कंधे डिसलोकेट होते रहते हैं या कभी, इसके बारे में सभी को जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। तो आपने बहुत बखूबी ये काम आज किया है, हमारे तमाम श्रोताओं को आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज का कार्यक्रम बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात इसी कार्यक्रम में अगले रविवार। तब तक के लिए नमस्कार।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। FM बैंड 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सर्वश्रेष्ठ

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की बजट की ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की और प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में हर वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: गौरतलब है कि यह भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है। इससे पहले 28 फरवरी को पहला और 31 मार्च को दूसरा प्लांट शुरू हुआ था। कैबिनेट में 12 प्लांट स्वीकृत किए गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के दौरान इस योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट के साथ शुरू की गई ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजना 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में मदद करेगी, जिससे लाखों लोगों के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना साकार होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। बालोतरा में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हुए सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कल

0: जयपुर शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जा रही देवास पेयजल परियोजना स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माणाधीन टनल और बांध कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टनल निर्माण स्थल पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया। उदयपुर के भविष्य की जल सुरक्षा के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके पूरा होने से उदयपुर शहर को लंबे समय तक स्वच्छ और पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध होगा। साथ ही पिछोला फतेह सागर झीलों के जलस्तर को बनाए रखने में भी ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इससे प्याज की खेती करने वाले किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए नेफेड और NCCF के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। मंत्रालय ने बताया कि देश में प्याज का पर्याप्त स्टॉक है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद मॉनसून की दस्तक के साथ ही मौसम जनित बीमारियों के बढ़ने से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर हैं। डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें आमजन को जागरूक करने के साथ ही अस्पतालों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि यहां जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर पहुंचकर लार्वा सर्वे और जन जागरूक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
1: जिले में जुलाई माह को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाया जा रहा है। जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू नियंत्रण और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पानी की टंकियों, कूलरों, ड्रमों, गमलों, फ्रिज की ट्रे, पुराने टायर और अन्य जला भराव वाले स्थानों की जांच कर लार्वा नष्ट कर रहे हैं। साथ ही आमजन को स्वच्छता बनाए रखने, पानी जमा नहीं होने देने और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। बाकी वैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की दस्तक अब पश्चिमी जिलों तक पहुंच रही है। कल बाड़मेर के चौहटन और गडरा रोड इलाके में तेज बरसात हुई। इसके अलावा बायतू, रामसर और धनाऊ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बरसात होने के समाचार हैं। जैसलमेर में हुई तेज बरसात से आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 4-6 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की चेतावनी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में दो पारियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा का पहला चरण सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, प्रवेश पत्र और वैध फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लाने तथा परीक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का

0: अगला चरण विकसित उड़ान शुरू, 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट की ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के 9:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है देवी श्री प्रसाद ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना, आवाजें हैं मोहसिन शेख, ज्योतिका टांगरी मेलोडी और ऐश्वर्या भंडारी की। दानिश साबरी ने लिखा इसे और संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

तो दोस्तों, आज के चित्रलोक प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से आवाजें हैं विशाल ददलानी, हंसिका अय्यर की, और इस गाने का तमिल रैप का अंश गाया है श्रीचरण कस्तूरी रंगन ने। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य और निरंजन अयंगर के, संगीत विशाल शेखर का। तो मैं कहता हूँ आपसे, लेट्स गो ना ऑन द डांस फ्लोर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में कोधे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

0: Right, right, right. All right.
1: How old dear, come,
0: Where?

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष भूमिका

0: दे।
1: फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज के बंगाल कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं ये संदेश।
2: युवानी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940।

0: विविध भारती पर।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं ये संदेश।
2: युवानी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर एसटीडी कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।
1: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
3: की जिंदगी से जुड़े हैं, हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
4: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती
3: है। बिल्कुल।
4: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी, वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडी कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
3: हाँ हाँ।
4: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
3: बिल्कुल।
4: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
3: हाँ।
4: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है क्योंकि दोनों गाने वही थे।
3: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर
4: नहीं, नहीं,
3: नहीं। चुनरिया पर ही
4: नहीं, नहीं, नहीं। मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
3: आपस का
4: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5000 चुनरिया तो नहीं है।
1: हाँ।
0: और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखो, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग।
1: हाँ?
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सैन
0: को जगह ही रहता था।
1: अरे
0: और फुल प्यार बाजा रखा, हाँ बोल, हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के? हाँ। ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया
0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: वो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी।

0: चुनरिया ऐसा एक गाना था, इत्तेफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए, इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों के संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत, भले ही वो गाने मेरे नहीं आए लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहां तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए, दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी, जी।
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ अरे लिख लेना, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ।
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता तो तेरा ठीक है, लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ तीन पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी, मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह।
0: तो इतने ग्रेट थे, वरना कहाँ रविंदर जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो। देखिए रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे कभी भी बांद्रा, जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल,
1: अच्छा,
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं।
1: हाँ।
0: आए हैं,
1: भूख
0: लगी होगी और ये मांगेंगे नहीं, लेकिन बिना खाए उस रसोई से भाभी ने जो उनकी मिसेज थी वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत
0: cool. एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ।
0: एक गाना है मेरा फिल्म है शिखर।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा।
0: मैं बेचैन हो गया। हमने कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया।
1: अच्छा।
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। मैंने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए
1: जी।
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है।
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा।

0: तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है, ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का, और मैंने गाने लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार विजू,
0: पहली बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था, तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं, क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं, लकी सब में है ना।
1: हाँ।
0: दावा नहीं कर सकते
1: जी,
0: अपन
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है, मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी।
0: बोले तू एक काम कर, मेरे घर फोन लगा। मैंने उनके घर फोन लगाया, मिसेस को वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था। तो ये इस गाने की कहानी है, बहुत ही खूबसूरत गाना था
1: जी, और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बना,
0: और मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ। ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया, उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें ना जानने को मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है, मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे
1: जी।
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है।
1: अच्छा।
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: ये गीत की कहानी ऐसी है कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे गाड़ी में बैठे हुए, तो मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त।
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
1: बिल्कुल।
0: बोला मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे बर्दाश्त के कितने हैं,
1: बहुत।
0: तो सर ये बनाते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है।
0: फिर मैंने दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता, फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी तेरे बिन तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया, और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। तो, क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है, और क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलते थे यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है।
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कोई चीज को क्रिएट कर रहे हैं,
1: लेकिन नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है, तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये

आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले विशेष कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
2: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए जी। और समाज में बड़ा परिवर्तन है।
2: तो देवेंद्र जी, आप बड़े ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
3: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है। अच्छा। हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं हुआ।
2: अच्छा।
3: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गाँव को हरा भरा बनाए।
2: तो ये कब शुरुआत की आपने?
3: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल अपने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
2: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
3: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
2: जी,
3: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
2: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
3: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़

0: प्रति बहुत कम विचार, लेकिन जब धीरे धीरे गए उनको इनके महत्व को समझाया तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गाँव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे, वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
0: वैसे तो पूरे समाज का जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने जैसे अक्सर समाज में होता है अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे करते
1: कहां पर है बेटी रोड, कहां पर है?
0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो वो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए देश के लिए कार्य करते हैं उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अब भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है पेड़ लगाना वो माली का ही काम है, शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ काम बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है लंबी छुट्टी या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं ड्यूटी के साथ साथ समाज का इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है, घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हम पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है, तो शुरू में घर में परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े, लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े, जब हवा ही सांस लेने

0: योग्य नहीं रहेगी। तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गाँव से 1995 में आया और गाँव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला। और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गाँव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गाँव भी हमारा है, ये गाँव भी मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गाँव गाँव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृ शक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूं, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गाँव में जाता हूं क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गाँव व्यक्तियों का नहीं होता, गाँव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गाँव बनते हैं।
1: अपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को विचार को हिला दिया, समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे, वो उनका एक गाँव था और उसमें गाँव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहनें युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव-गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव-गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतड़ प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था, हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए, जब उसके

0: पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहाँ भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने, और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गाँव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गाँव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं, और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है, और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सका है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें, और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, मैं अपना अनुभव साझा करता हूँ आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जो हम वृक्षारोपण करते थे वो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा, और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में, तो वहाँ पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, एक जैसे घर में त्योहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गाँव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं, आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं, जैसे अगर अपने NCR या हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें एक बेरी का पेड़ है, या नीम का पेड़ है, या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके देश के।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गाँव में जाते हैं, गाँव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी, अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल, चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े और थैला प्रयोग करते थे, और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला,
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल, वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ, प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई, और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है, लेकिन समाज की बात करें लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा, एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं, हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिनके बड़े पेड़ है

0: गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है,
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में चार सदस्य हैं तो चार पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूँ, अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहां देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाए वो वृक्ष में तब्दील हो, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है, किस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है 1-2 पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमरता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालू मरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी

0: बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही है तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। FM बैंड 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 10:56 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
4: निकाला विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल, वो लम्हा हमारे साथ आपने साझा किए हैं, इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
5: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सब से मैं मिला हूं।
4: जी, और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
5: और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
6: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: जयंत जी
0: जी,
1: आज की विविधा का आरंभ मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का। एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते, आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए। ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचानी इसकी गीतकार कौन है।

0: पुष्प का
1: वाह
0: एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते। आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया
1: जी।
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी, जी,
0: रहे
1: जी।
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही और... बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह

थी एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है। आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई, और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया, एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नौरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ए मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी, और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे, और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मनपसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा। और

उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है। इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: क्षमा मैं भूल हूँ, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए जी, तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार।

0: जी
1: और
0: हाँ
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की
1: इसीलिए
0: है।
1: फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी, एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है। कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की,
1: जी
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशौरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
0: जी
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी
0: जी
1: फिल्म के
0: जी
1: लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था।
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था, और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
1: जी 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की, और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई, और हमारे सामने की सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत। और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्ड सुनाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए।

अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।

0: साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या जी, किया जी। था क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो

0: और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीजें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सेप्ट करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में,
1: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया।
0: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीजें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, वो छोटी छोटी चीजें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीजें उसने, बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है, स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल
0: जी
1: की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं।
0: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे, और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में, ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था, बहुत ही हिट था उन दिनों, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे।
1: जी हाँ,
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे, और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं
0: जी।
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था
0: जी।
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा, जो आमतौर से लोग बहुत ज्यादा सीख कर गाते हैं, उस तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है
0: जी।
1: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना, इस तरह बचपन से मुझे काफी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊंगा,
0: कामयाब होंगे
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर BCOM तक पढ़ाई की, खींचा तानी करके।
0: अच्छा।
1: घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नजर नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं, तो मैंने फिर भी काफी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो, वक्त बर्बाद नहीं करना है,
0: मुंबई चले।
1: हाँ, बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल

0: स्ट्रगल रहा। और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे, कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ। यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा, अब भी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
1: किसने कहा था?
0: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो। तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया।
1: अच्छा।
0: रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग और फिल्म मर्द के लिए अमिताभ बच्चन।
1: अच्छा।
0: मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया, तो रिस्पॉन्स इतना अच्छा था क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और जाकर हाँ कि अरे फला एक नया लड़का है उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अनु मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचमदा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
1: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, तो कैसे मिला
0: था? तो कमाल है, आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और हूं और आगे भी रहूंगा,
1: रहेंगे।
0: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं। क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के, तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर।
1: जी जी।
0: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशिल लाल नायर। कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है।
1: अच्छा।
0: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन, तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कहिए या रफी साहब की चाहत थी क्या थी, कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं ना
1: जी,
0: प्रिट नेम है बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है, तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
1: जी,
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर, इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं क्योंकि रोज का काम उनका, वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एक तो सन्नाटा छा गया। वो
2: न फनकार तुझसा

0: गाना जब बनता था ना तो जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
1: जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया? अच्छा
0: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
1: जी,
0: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या
1: जी।
0: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को
1: जी,
0: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है।
1: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
0: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए
1: जी,
0: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया
1: जी, जी।
0: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ पूरा हो गया जी, बिल्कुल।
1: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था?
0: मैं एक दफा गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई एस डी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था
1: जी,
0: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए नए लड़ जाए हैं ये सब, बिहार का सिचुएशन देख कर पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब, जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला, देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो।
1: अच्छा,
0: वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर, और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अधनायक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज दे कहाँ है, और गाने के बोले रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा, इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं। एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी जी,
1: नात मनकबत जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी,
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल

0: वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी
1: जी हाँ,
0: संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है।
1: अच्छा,
0: वो सारे हनुमान चालीसा सारा, टाइटल भी आपने सुना होगा, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल पूरा चौपाइयां दोहे जो जो थे वो सारे सब मैंने गाया। मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
1: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए कौन कौन से नहीं।
0: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए।
1: अच्छा,
0: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं
1: जी,
0: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो उसमें 4 सिंगर है। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था
1: जी।
0: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2,500 है और 4,000 के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने
1: जी जी,
0: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10,000 के ऊपर गाने हैं मेरे।
1: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
0: 17 या 18।
1: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
0: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब की रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते हैं।
0: मगर मनीषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस आएंगे विविधा का अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को आपकी मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर

किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर

0: बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए ये एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जमाने को दिखाना है, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: आकाशवाणी के 9 दशक, जी हाँ पूरे 90 साल। आकाशवाणी आपके भरोसे का साथी, आपकी आवाज, आपके दिलों की धड़कन, निरंतर सेवा में समर्पित। ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और संस्कृति का ये है अथाह सागर। पीढ़ियों से सदा है हमारा मार्गदर्शक, गांव से शहर तक है हर घर में इसकी गूंज। आकाशवाणी के 90 वर्ष, ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये है हमारी विरासत, हमारा गौरव। सुनते रहिए आकाशवाणी, सदा बहार, सदा आपके साथ।
0: एफएम बैंड 103.1 मेगा

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बरसात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: समीर के बोल आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। दामिनी फिल्म का ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे

आशा भोसले और येसु दास की आवाजों में दौड़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज में ये गीत।

दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विनोद राठौर और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत क्रिमिनल फिल्म से।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में क्रिमिनल फिल्म का ये गीत आपने सुना, इंदिवर के बोल, एमएम क्रीम का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मूज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके तहत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। विज्ञान और

प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में लिवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क की तीसरी वर्षगांठ पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जेनेटिक बनावट, पेट के आसपास चर्बी की अधिक समस्या और भारतीयों की खास शारीरिक बनावट के कारण लोगों में मधुमेह, फैटी लिवर और हृदय रोग का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक तरक्की के साथ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता और व्यवहार में बदलाव से इस चुनौती से निपटा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई की मृत्यु हो गई है। वे लंबे समय से बीमार थी और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान

की गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई की मृत्यु हो गई है। वे लंबे समय से बीमार थी और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजन बाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रौबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। इधर राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट में उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय लोक कला में उनके उत्कृष्ट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। केंद्र सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटपूतली बहरोड के दौरे पर हैं। श्री यादव जिले की मुंडावर पंचायत समिति सहित विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने जाट बहरोड गांव में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उनका रक्तदान शिविर के साथ ही जैतपुर में श्री श्याम मंदिर में नवनिर्मित श्याम कुंड उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। करौली में पांचना बांध के पानी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने कल संबंधित अधिकारियों के साथ बांध का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जल संसाधन विभाग की टीम ने नहरी तंत्र का तकनीकी परीक्षण भी किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी थी। प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून की बारिश का दौर बना हुआ है। सवाई माधोपुर में सुबह तेज बरसात हुई। हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय सहित भादरा, संगरिया और पल्लू क्षेत्र में भी हल्की बारिश के समाचार हैं। जैसलमेर में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इससे पहले कल सीकर, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और अन्य जिलों में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मॉनसून गतिविधियां जारी रहने और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म के। इस गीत में आपने सुना भूपिंदर और लता मंगेशकर की आवाज को, जो कि हमने आपसे पूछा था, सवाल का सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथियों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है कई बार, जैसे छत पर पड़े रहकर या सोकर तारे देखना या आसमान में मतलब जाड़ों की धूप सेकना, तो इस तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। तो क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीजों का अनुभव लिया है या कुछ की उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन में है, ये हमें बताइए। और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल जहां बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं उम्मीदें और चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई फुर्सत के पल ढूंढता है, कोई नौकरी की तलाश में, कभी दुख तो कभी सुबह की फैली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूरज की भांति अंधेरे को मिटाकर जीवन में रोशनी भर देंगे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का माया जाल है, एक धागा सुख का तो 100 धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ हर एक को सुख की तलाश रहती है, फिर भी हमें कभी खुशी कभी गम कभी धूप कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं होता, फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। जीवन में अक्सर गम के साए नजर आते हैं, सह लेता है हर दर्द को जो हंसकर, असल में वही लोग इस जहां में मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन वाकई हर चीज में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में है उसमें भी एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति थोड़ा सुकून तो होता ही है। वरना तो हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इस गीत में भी है ढूंढने की कोई बात। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत और फिल्म में कौन है इस गीत में नायक।
1: डियर सर, सेवा में निवेदन है।

नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कहने की आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह, क्या बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है, फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जो जमीन मिली है वो, जो आसमां मिला है उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ तो शायद अपना अधूरापन भी पूरा लगने लगे। वहीं हमारे साथी ने कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ता है, जब धूप तेज होती है तो बाहर जाकर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये एक चाहत होती है कि कुछ पल सुकून के मिले। एक गीत मुझे बहुत याद आता है, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस तरह से उन्होंने बहुत से गीतों का उल्लेख किया। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, हर किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहत है, अपनी कहानी है। कोई फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है तो कोई काम करके खुशी ढूंढता है, तो किसी का संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख के बादल घिराते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यही है कि हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कोई अपनों की भीड़ में अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन का चक्र है। इसलिए मुकम्मल जहां शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो अपने आप में संतोष, कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है उसके लिए ये हर अधूरापन एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा, और वाकई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन जैसे कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन भर, जबकि वो उसी के पास होती है। तो हर शांति जो है वो हमारे अंदर ही है, और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताइए जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज में है, नायक नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हमने पूछा था भाई कौन नायक नायिका हैं इस फिल्म में, बता देंगे तो हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी इस फिल्म में नजर आती है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, सर्दी में गुनगुनी धूप का आनंद लेना तो आज भी लेते हैं। तो ठीक है, वो दिन लद गए तो उसका कारण तो हम बाद में जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं। वही लेकिन हमारे साथी कहती हैं कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते न सपने न लोग न जिंदगी, हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन

0: नहीं, शायद यही जीवन है, तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ ना मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं, लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए जीवन में कुछ कमी है तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह, क्या बात आपने कही। हमारे कौर साथी कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है, जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है, जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी न किसी चीज की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह, आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत है। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरी चाह जन्मती, इसी तरह इसी आकाश के नीचे कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज ढूंढी है, बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज की तलाश सबसे ज्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए, फिल्म का नाम भी।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में,

घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, क्या हमारे जीवन में हर चीज मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज्यादा किसी चीज की चाह नहीं है, या जिन चीजों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफर जीवन रंगमंच है। इससे पल इसमें हर पल हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए थे, लेकिन घर की होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धनपत्नी ने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट पकड़ा दी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आज सभी आइटम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई है। तो और वो कह रहे कि मैंने भी कहा जो हुक्म मेरे आका पर मार्केट सुरीला सफर प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर देने हैं, क्योंकि रविवार को होता है ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन। और आप कैसे बताते हैं अपना ये छुट्टी का दिन भी हमें बता सकते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने आंगन में चार पहिया खाट पर आसमान के नीचे तारों को देखकर मीठी नींद में सोने का आनंद खूब लिया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल ढूंढता है इस गीत के अंतरे में जो जो बातें हुई वो बहुत सी चीजों को, बहुत सी उम्मीदों को बताते हैं। और उनका कमेंट थोड़ा खो गया है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की उम्मीद, इस तरह की ख्वाहिशें होती ही हैं, उसमें से कुछ तो जरूर पूरी हो चुकी होती हैं बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों के लिए बाकी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस गीत के विषय पर आपने जो पूछा उसकी एक बात वो है, वादियों में खामोशी सुनने की उन्हें चाह है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये चाह जल्दी ही पूरी हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नेहा जी इच्छाओं की सूची पहले बहुत लंबी थी, अब थोड़ी छोटी कर ली है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब तलाश समाप्त होती है तो दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। आम चीजें भी खास लगने लगती हैं, सुबह की धूप, हवा का झोंका या किसी की मुस्कान, हर छोटी चीज में एक गहरा रस महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई जब हम अपने जीवन में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं, नजरिया बदलते हैं, तो बहुत सी चीजें भी बदलती जाती हैं, हालांकि वो वही होती हैं जो पहले भी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज की तलाश नहीं है तो कोई एक ऐसा ही गीत हमें मिला है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी आज की लिस्ट क्या थी काम की, रविवार की कोई काम की लिस्ट बनाई थी आपने छुट्टी की,

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जैनविन से लिखा, रोशन का संगीत, मन्नडे, आशा भोसले, बतीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया, अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वहीं हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुशनसीब हूँ जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया, पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुनना सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना। ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं, और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना, इस फॉर्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं।

प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का जरूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाजार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता, हमारे यहाँ बाजार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मॉनसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग एक घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई है। इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिजायर लेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। हमारे और साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान जरूरत से ज्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे और साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के जमाना देखा। तो ये इनका कहना है। साथी कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा भाई, सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी एक और साथी कहती है कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम

नींद अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती है और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदर नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते, पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफी। असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं। कोई कहे तू है ना टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही हमारे एक और साथी ने। इतवार का क्या प्लान है, ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें बताइए। और हमें जरूरत है कि इस गीत को किसने गाया है ये भी आप हमें बताएं।

0: जरूरत।
1: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना, और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने कि आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं, इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कहने कि आज इतवार है, फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में, गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कहने कि हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी, उनके फरमाइश की एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता, तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है, क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूँ, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक और साथी कहने कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं, तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा, वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कहने कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं, वो बताने कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की, क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी का देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए, और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज की जरूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने किस्सा लिख भेजा है कि जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनकी जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था, और आईनी के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने सामने आती गई और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि 4 हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं, क्योंकि 4 हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जरूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति इन जरूरतों को जरूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया। फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना, के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक लिंटोन की आवाज में आपने ये गीत सुना। इरफान सिद्दीकी ने लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे, हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ। भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की जरूरत है क्योंकि हम अकेले हैं, कहने को तो सभी ही हैं इस परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। मैं पत्नी को मिस कर रहा हूं जो अब नहीं है। बिल्कुल आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं। आपको समय पर चाय, नाश्ता, खाना तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से जरूर मिल जाएगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती है और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूं। भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।

गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं। हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं?

0: नमस्कार। मुख्य समाचार। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच

0: मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल तंबानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: The significance is immense.
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
5: ग्रेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन दिस टू लार्ज कंट्रीज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर

0: प्रसारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जेनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: दीरे दीरे वो हमारा ढाला पे है जैसे पानी में घूरा ढेला।
3: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
4: दोनों जने मिल के सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
5: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना ले ले चला। सावन में
3: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमरीका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ

0: अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल ध्यानवी की बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर

0: एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिले मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, जी चाहता है।

जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

ہم سے محبت ہم سے جوانی رنگ بھری ہے اپنی کہانی ہم سے محبت

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गुमनाम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: Escute a Regui.
1: Mancha Regui.
0: Mancha Regui.
2: कार्यक्रम मंचा है गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में पसंद का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले जान लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मंचा है गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ, सूर्यकांत, सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी की पसंद पर

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहू बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर

0: तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो बात।

10 नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मंचा है गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाले ही बताएं। इससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू साजन के मास्टर शिवांशु ऋषु अभिषेक नायडू दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन नईमा बेगम कासिम अली नदीम अली और जुनैद अब्बासी आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन इससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सके। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत इंदिवर के बोल पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

सुन रहे हैं अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंगी से, गजानन निखार, खुशहाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की, और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है, सौदागर फिल्म के लिए ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखू जिला जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव प्रशांत, राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझमें भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
3: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
4: कौन सी रानी लीलावती?
3: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों है?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
4: जल्दी से फोन का सहारा लिया जाए।
3: अरे बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र के साथ पूरी।
1: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
5: भला हम कौन होती है
1: महाराज के साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
5: चलो।
3: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
4: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। पिलंगे हाथों पकड़ के चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिंह नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
2: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना? तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
3: जी हाँ, आप एकदम सच कह रही हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है, तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
2: परंतु देवी,
3: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
2: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
3: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आलीपुरी का हम चले यहाँ।

0: कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी ईरावती ने महाराज।
1: लगता है ईरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी ईरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालिका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन रहा हो कान में सुन। मैं नाक बांध करके नाक मुद्रा लेके
1: जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझाए देता हूं महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आइए गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजी आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे श्यारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: महाराज मर गया, मुझे बताइए मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भागकर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
6: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेते चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहां फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल परी का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
5: अरे काल ने मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला न हो।
3: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभाल रही दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
0: मैं आपका पांव सका हूँ, सुना तो मेरे बात मेरी निपुती माँ की पेट भाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
6: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
6: देव की कैसी आज्ञा।
0: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुकी हो वो क्षमा के लिए।
3: नहीं नहीं अरे गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
6: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
3: मेरी मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
6: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम।
0: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमुख वन में पहुंचा देना, समझे?

0: और ये गौतम, आज आप निकले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी के अंगूठे।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालिका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
0: ओह,
1: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें ही मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
0: ठीक है ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
1: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र गृह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढ कर वहीं लाया।
2: जो आज्ञा।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है। अच्छा सखी, तुम भी मुझे बना रही हो?
1: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। हाँ? तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
0: स्वामी की जय हो।
1: सखी उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीत भर कर महाराज का रूप देख कर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
0: क्यों सखी,
1: चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
0: ये
1: छोटी रानी इरावती है।
0: ओ
1: सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक सन ही जान पड़ता है। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
0: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
1: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है। तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
2: हे कमल नयनी,
1: स्वामी की जय हो।
2: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रोट गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
1: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रोट गई थी? स्वामी की जय हो।
2: प्रिय,
0: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
2: मित्र क्या बताऊं, तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है। हमारी
1: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
0: सखी मुझे अभागी की तो महाराज से स्वप्न की कभी भेंट नहीं हुई।
1: महाराज इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
2: उत्तर क्या दें बकलावाल का, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
3: अरे बकला वाले का, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। उसे भगा ले।
4: चले
3: महाराज, घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र गृह के द्वार पर हूँ।
1: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
5: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
1: बेचारे को सांस नहीं काटा था, तो चल वहीं चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
5: देवी
1: आप कुछ कहते कहते रुक जाओ।

0: को?
1: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
0: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
1: अरे पगली, किसी दूसरे से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आदि गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रही हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका,
0: सुना स्वामी ने, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रख रहा है मालविका का।
2: मालविका तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
0: ये कृतज्ञ ब्राह्मण, ठहरिए आइए हम दोनों उस खंभे की वट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक ब्राह्मण पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ। अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
3: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केत की ये कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार नहीं डरा।
4: कहाँ है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए दिल्ली मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी इरावती
1: सच्ची बकुला वलिका, ये कैसा है?
0: बकुला वलिका तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ तुम दोनों को बंदी ग्रह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
6: जो आ गया
3: तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। तो मेरे से छूटा हुआ कबूतर
4: इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
0: देवी क्या बात है नितिन का, तू लौट आई? रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया आइए इधर कामने सुनिए।
1: सिक्की बकुला वाली का मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
0: अच्छा तो ये सब उस ब्राह्मण के करतूत है क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
7: यदि मन नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे प्रश्न देता?
0: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
8: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार, उसका दोहर पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहरे अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
9: वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार, वीरसेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार सेवक भेजे हैं। विदिशापति विदर्भ विजेता महाराज अग्निमित्र की

0: भूषण विदिशापति महाराज अग्निवीर
1: ब्रह्मगमन उत्सव में बधा रहे
0: शुंग कुल भूषण विदिशापति महाराज अग्निवीर
1: ब्रह्मगमन उत्सव में बधा रहे हैं।
2: जय हो विदेश विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
3: देवी सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
2: विराजिए दिए विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
3: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की बात पूरी हो। आर्य पुत्र फूलों से लदे सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। हाथ के लिए अशोक का ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
3: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
2: हाँ महाराज जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बना कर ले गई है तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देती रहती हूँ।
3: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
4: महाराज की जय हो। विधर्म से जो कलाकार स्त्रियां आई हैं यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
5: ले आओ
4: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज प्रस्तुत हैं।
6: महाराज की जय हो। महारानी की जय हो।
3: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
6: महाराज हम लोगों ने संगीत सीखा है।
3: लो देवी इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
2: मालविका आके देव देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
6: अरे राजकुमारी आप यहाँ। जय हो राजकुमारी। जय हो।
2: अरे मालविका राजकुमारी।
3: मालविका राजकुमारी।
6: हाँ महाराज ये हमारी राजकुमारी है।
3: कैसे?
6: सुनिए महाराज आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सिंह को बंदी गृह से छुड़ाया है ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी है।
2: ओह तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह चंदन से खड़ाओं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
3: भद्रे बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
6: मैं निवेदन करती हूँ महाराज कुमार माधव सिंह हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य स्मृति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सिंह को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री स्मृति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
3: फिर क्या हुआ?
6: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
7: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
3: भगवती आप?
6: राजकुमारी सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
7: हाँ यही है। प्रणाम भगवती। कल्याण हो।
3: भगवती क्या ये भी आपकी शिष्या है?
7: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
3: अच्छा अब कुछ बात समझ में आने लगी।
7: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
8: मंत्री जी ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यह तो मेरे जैसे रात हो गई।
3: डरिए नहीं राजकुमारी जी हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
8: भैया आप भी तो।
3: मेरे जीते जी राजकुमारी जी रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
9: जानकारी है वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।

0: आगे जा रहे, अरे भैया लगन हुआ होकर घर आ रहे,
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूट कर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ही मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
1: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया। ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही।
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन ने आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
1: राजकुमारी, वो तो बहुत अच्छा हुआ आपके भी राजकुमार को महाराज ने आधी रात का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
4: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र, लाओ देखें।
1: मेरे जीवी से सुनने को छटपटा रहा है, मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकट पूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए नए पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांध कर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनों ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ। फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
1: महाराज, महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों के लिए सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
3: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
2: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगली, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
3: जय सिंह।
4: आज्ञा देवी।
3: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी रावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था। हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, ये कोई विघ्न न डाले।
4: देवी

0: ही कैसी हत्या है?
1: मालविका इधर आओ, प्रस्तुत हो देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप मजा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
2: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लगाए करते हैं।
3: श्रोताओं, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहाँ चलते हैं जहाँ अर्ध सत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहाँ तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्ध सत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी किए, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8 10

0: बस 12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की। पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकेंड

0: काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था बटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता, तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं। बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में। इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
0: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है। अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहाँ गाना सुनते हैं।

0: आता है उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी,
1: ओहो हो हो,
0: और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी काम कराई जा तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह।

0: वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी
1: कि एक बार फिर से वो जनाना रोल,
0: जनाना रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है,
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है भी करो, तुम्हें यही करना है तो करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत,
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी रीलें चलती हैं। हाँ। और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी सारी फिल्में हैं जो
1: 80s वाला दौर।
0: हाँ हाँ हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वॉज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई। तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: तो है। वो चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुंदा, कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा यू नो बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे।
1: हाँ, हाँ।
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में।
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
1: हाँ।
0: काला नाग राइट, बीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ शुरू।
1: हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट, ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में।

0: बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्म में. तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के.
1: बिल्कुल, उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं. एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना.
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई. मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है.
1: बिल्कुल,
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती. मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है.
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की.
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है.
0: करेक्ट,
1: वहां
0: करेक्ट.
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है. तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ.
0: करेक्ट,
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था.
0: बहुत ही और उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली.
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था.
1: ऑफ कोर्स,
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो. अगेन अमित जी का वो कमबैक था. आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी. तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे. राइट, सब लोगों को ऐसा जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे. और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे. मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था. मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे.
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं. वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है.
0: पूरा पूरा, दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे. वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना है, अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे. तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे. राइट, तो प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक. लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा खत्म के. और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था.
1: बिल्कुल,
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते.
1: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी है तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था. तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था. और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त. अच्छा. अब मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है. और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है. टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था. पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं. हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म.

0: एज अ स्टूडेंट. तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो. ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था. और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी, और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो.
1: ओहो करेक्ट.
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी, और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वॉज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट. तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं, फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं. तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे.
1: बिल्कुल. सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था? जब शूट्स होते थे घर पर, क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था. मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से.
1: अच्छा.
0: हाँ. और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था. जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी. और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत.
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था. दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट ऐसे करके. तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे.
1: अच्छा.
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे, उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो. वो जल्दी उठते थे, 6-6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे. और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना. बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से
1: बिल्कुल
0: आते हैं.
1: बिल्कुल.
0: मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें. मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है. तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी. तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी. और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे.
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे. पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे. फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था. पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास, और उसका कैसे अर्थ निकालना है. आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है ये आप डिसाइड करो.
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं. बिल्कुल नहीं.
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखते बैठेंगे.
1: सख्त मनाही.
0: सख्त मनाही. बिल्कुल नहीं आते थे. लोगों ने बहुत प्यार किया. तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है. मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो 2-3 दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे. तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए. औरंगाबाद में

0: फतेहाबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है। तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ, वो अजंठा में जा ही नहीं पाए,
1: अरे अरे अरे,
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते।
1: ओ हो,
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है,
1: बिल्कुल।
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहां हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: श्योर।

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे
1: और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: ओके, फिर वो जवाब बाद में।
1: हाँ, वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उनपे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था। राइट। तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी
1: फैमिली चल रही थी। फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी, और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है। राइट। कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म। राइट। पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन
1: कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी।

0: जी के साथ
1: तो मुझे
0: काम
1: वो दृश्य
0: किया,
1: याद आ गया
0: बिंदु जी
1: जिसमें
0: के
1: वो
0: साथ
1: सो रहे
0: काम
1: हैं और वो
0: किया।
1: जगाने आती हैं।
0: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: अर्धसत्य
0: दिखाऊंगी, ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत ही
1: तो
0: अलग,
1: क्या लीक थी वो?
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार।
1: हाँ।
0: एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर
1: लेकिन
0: वो इतनी
1: ये
0: ओवर द टॉप नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी।
1: यस,
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो, मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था।
1: अच्छा।
0: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं, फिर दिलीप ताहिल जी थे उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म, ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी।
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है।
1: हाँ।
0: ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
0: प्लीज।

0: ये वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोगी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकथनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए। बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसर, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोगी की थी। दोगी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी।
0: तब और तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को
0: मिला।

0: मिला नेशनल अवार्ड. यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
1: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
0: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी. जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है. आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है. तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था. तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं. मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तुपुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो. तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं, तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं.
1: राइट,
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है, क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे.
1: जी,
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो. अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो.
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
0: बहुत अच्छी बुनियाद है. और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है. तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं. आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था. मराठी में हम जिसे देवान घेवान कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी. कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे. अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है. तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे मोल्ड करना है. एक्टर का से बहुत कम रह गया है. तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया. इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली, वैसे ही दोघी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली. एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी. तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
1: बिल्कुल,
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है
1: जी.
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर. तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है. तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म.
1: बिल्कुल. यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं, क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ.

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

नमस्कार बाल दोस्तों, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम फुलवारी में आपकी शिल्पा दीदी करती हैं आपका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, जून का महीना खत्म हो चुका है, मानसून की फुहारें आ चुकी हैं और इसी के साथ एक और चीज वापस आ गई है। जी हाँ, स्कूल की घंटी। देश के लाखों घरों में एक जानी पहचानी जंग शुरू हो चुकी है। यह जंग है सुबह सुबह बिस्तर से उठने की जंग। एक तरफ होती है माँ की कड़कती आवाज और दूसरी तरफ चादर में दुबका हुआ सा मासूम सा बचपन जो कहता है, माँ आज बहुत तेज पेट में दर्द है, आज स्कूल ना जाऊँ क्या? लेकिन तभी माँ मुस्कुराती है और डांटती हुई कहती है, नहीं चलेगा कोई बहाना, अब तो होगा स्कूल जाना। हम सब जानते हैं कि 2 महीने की छुट्टियों में नानी के घर जाना, देर तक सोना और दिन भर खेलना किसे पसंद नहीं होता। बच्चों के लिए यह आज़ादी बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन बच्चों, स्कूल वो जगह है जो हमारे सपनों को पंख देती है। इस बार जब आप स्कूल जा रहे हैं तो सिर्फ आप पुरानी क्लास में नहीं जा रहे, बल्कि एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। नए दोस्त, नई किताबें, नए कॉपियों की वो सौंधी सी खुशबू और नए टीचर्स। यह समय डरने का या आलस करने का नहीं, बल्कि एक नए रोमांच पर निकलने का है। बंद किताबों के पन्ने अब खोलना है, आलस की चादर को अब छोड़ना है, ज्ञान के इस समंदर में डुबकी लगाकर सपनों की नई मंजिल को टटोलना है। लो गूंज उठी है शहनाई ज्ञान के मंदिर की, अब तो उठो मेरे प्यारे, आगे ही बढ़ते जाना है। प्यारे बच्चों, स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं है जहां जाकर चार दीवारी में बैठकर ब्लैक बोर्ड को देखना है। स्कूल तो वह जादुई खिड़की है जहां से बच्चे पूरी दुनिया को देखना और समझना सीखते हैं। स्कूल वह जगह है जहां उन्हें उनके जीवन के सबसे पहले और सबसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। वो लंच बॉक्स की शेयरिंग, वो गेम्स पीरियड की मस्ती, वो टीचर्स की डांट में छिपा हुआ प्यार, यह सब कुछ बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ता है। इसलिए कल सुबह से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आपको उठना है, यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होना है और शान से कहना है, नहीं चलेगा कोई बहाना, अब तो स्कूल है जाना। बच्चों, स्कूल जाकर आप टीचर से तो बहुत कुछ सीखते ही हैं, हम बच्चे भी आपस में एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ऐसी ही एक बच्ची हमारे स्टूडियो में आई है जो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। तो बच्चों के मुख से इस विषय के अंतर्गत सुनते हैं काव्या से बातचीत। बच्चों, जरूरी है कि हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, पर अपनी संस्कृति से हम जुड़े रहें।

0: हमें पता होना चाहिए हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में, ग्रंथों के बारे में तथा संस्कृति के बारे में। जाने हम हमारे जीवन में क्या है योग का महत्व। आज हमारे स्टूडियो में आई है एक प्यारी सी बच्ची जो आप सभी बच्चों को ही नहीं हम बड़ों को भी बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो सबसे पहले बेटा आप अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम काव्या है। आप सभी को मेरी नमस्ते। मैं 11 साल की हूँ। मैं सप्तमी कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे योगा, यज्ञ, गीता अध्ययन करना और भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है।
0: बेटा आप गुरुकुल में पढ़ती हो, तो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का आपका अनुभव कैसा है? आपको वहाँ क्या क्या सिखाया जाता है?
1: गुरुकुल में केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि योगा, यज्ञ, संस्कार, आत्मविश्वास और भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। वहाँ का वातावरण हमें श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा देता है।
0: आपने बताया कि गुरुकुल में आपको योग भी सिखाया जाता है, तो योग का अर्थ क्या होता है?
1: योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग हमारे मन, बुद्धि, आत्मा को जोड़कर हमारे जीवन में संतुलन स्थापित करता है। जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही योग है। अर्थात जैसे कि समत्वम योग उच्चते, योग

0: हमें श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा देता है।
1: आपने बताया कि गुरुकुल में आपको योग भी सिखाया जाता है, तो योग का अर्थ क्या होता है?
0: योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग हमारे मन, बुद्धि, आत्मा को जोड़कर हमारे जीवन में संतुलन स्थापित करता है। जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही योग है। अर्थात जैसे कि समत्वम योग उच्चते, योग हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही योग है।
1: आपको योग करना बहुत पसंद है।
0: हाँ,
1: तो आपको कौन कौन से योगासन करने पसंद है?
0: मुझे सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, भुजंगासन, प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत अच्छा लगता है।
1: तो आप इन आसनों के बारे में कुछ हमें, हमारे सभी बच्चों को बताएंगे कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है?
0: सूर्य नमस्कार संपूर्ण शरीर का व्यायाम है। इससे शरीर में सफूर्ति, लचीलापन और ऊर्जा बढ़ती है। जैसे ओम मित्राय नमः, अर्थात सभी के मित्र स्वरूप सूर्य देव को नमस्कार।
1: इसके अलावा और कौन कौन से आसन आप करती हैं?
0: मैं भुजंगासन, वृक्षासन, ताड़ासन आदि आसनों का नित्य अभ्यास करती हूँ।
1: प्राणायाम क्या है, इसके बारे में हमारे सभी बच्चों को आप कुछ बताइए।
0: प्राणायाम एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने श्वासों को नियंत्रित करते हैं। इससे मन शांत होता है और मन एकाग्र होता है। प्राणो ही जीवन लोके, प्राण ही जीवन का आधार है।
1: आप बेटा इतना सारा योग करती है, आप बताइए कि सभी बच्चों को क्या योग करना चाहिए, क्या फायदा होता है योग करने से?
0: हाँ, सभी बच्चों को योग करना चाहिए। योग से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मन एकाग्र होता है, हमारे अंदर अनुशासन बढ़ता है और आत्मविश्वास आता है। इससे मानसिक और शारीरिक विकास होता है। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वस्थ शरीर ही श्रेष्ठ कार्यों का आधार है।
1: आपने बताया कि आपको गुरुकुल में बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान भी दिया जाता है, तो हमारे लिए जब सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिससे हमें सभी कर्मों के बारे में पता चलता है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो वहाँ पर क्या आपको श्रीमद् भगवद गीता का भी अध्ययन कराया जाता है?
0: हाँ, हमें श्रीमद् भगवद गीता का भी अध्ययन कराया जाता है।
1: तो आप कुछ भगवद गीता के श्लोक बताइए जो हमारे सभी बच्चों को प्रेरित करें।
0: यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं।
1: आपने बताया कि गुरुकुल में आपको यज्ञ भी कराए जाते हैं, तो आप बताइए कि यज्ञ क्या है?
0: यज्ञ एक अग्नि में आहुति देना नहीं बल्कि सेवा, परोपकार और त्याग की भावना का नाम भी यज्ञ है।
1: बेटा कहते हैं कि यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध हो जाता है, क्या वास्तव में आप यज्ञ कर रही हैं तो यज्ञ करने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है?
0: हाँ जी, यज्ञ करने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। यज्ञ में उपयुक्त औषधीय सामग्री पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होती हैं।
1: क्या आप वहाँ पर प्रतिदिन यज्ञ करती हैं?
0: हाँ, मैं प्रतिदिन यज्ञ करती हूँ। इससे मन शांत होता है, मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं और पर्यावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है।
1: बेटा आपने पहले हमें बताया योग के बारे में, अब आपने बताया यज्ञ के बारे में। योग और यज्ञ में क्या समानता है?
0: योग और यज्ञ दोनों ही समान है। जैसे कि योग करने से मन और शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही यज्ञ करने से पर्यावरण और विचार शुद्ध होते हैं। इन दोनों का उद्देश्य ही मानव कल्याण है।
1: आपको वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, आपको जोड़ा जाता है धर्म से, संस्कृति से और योग से, तो आप बताइए इन सबको सीखकर आप क्या चाहती हैं कि आप बड़े होकर क्या बने?
0: मेरा बड़े होकर यह उद्देश्य है कि मैं भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस IFS की अधिकारी बनूं। मैं राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ और सारे विश्व में भारतीय संस्कृति, योगा, यज्ञ, गीता और शांति का संदेश देना चाहती हूँ।
1: काव्या, जब आप यहाँ पर पढ़ रही थी और अब आप गुरुकुल में पढ़ रही हो, तो आप अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस करती हैं?
0: गुरुकुल में हमें अनुशासन, आत्मविश्वास और एकाग्रता आदि सिखाया जाता है। मैं यहाँ पर योगा इन सबको नहीं सीख पाती, ना मैं यज्ञ के बारे में जान पाती कि यज्ञ इतना महत्वपूर्ण है, ना मैं योगा के बारे में सीख पाती।
1: आप हमारे सभी जो सुनने वाले श्रोता हैं, जो सभी छोटे बच्चे हैं, उन सभी को क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: सभी बड़े बच्चे और बूढ़ों से मेरी यही विनती है कि वह नित्य योगा करें, यज्ञ करें और गीता पाठ करें और अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें, यही मेरी उन सबसे विनती है।
1: काव्या, गुरुकुल में क्या आपके लिए गीत संगीत या मनोरंजन की भी कोई व्यवस्था है? वहाँ पर आपको क्या TV दिखाई जाती है, फिल्में दिखाई जाती हैं?
0: जी नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं, पर हम

0: नित्य यज्ञ करने के बाद हम भजन जरूर गाते हैं।
1: अगर आपसे हम पूछें कि आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत कौन सा है, तो कौन सा फिल्मी गीत आप सुनना चाहेंगी?
0: 1978 की एक मूवी है जो है सत्यम शिवम सुंदरम, उसका गाना है सत्यम शिवम सुंदरम। उसकी जो राइटर हैं पंडित नारायण शर्मा, और जो उनके कंपोज़र हैं वो हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और जो सिंगर हैं वो हैं लता मंगेशकर जी। उनका गाना है सत्यम शिवम सुंदरम।
1: मुझे लगता है कि सिर्फ योग और पारंपरिक संस्कृति में ही नहीं, आप हर क्षेत्र में परिपूर्ण हैं। सभी चीज़ों की आपको पूरी जानकारी है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बेटा आप हमारे स्टूडियो से जाएं, उससे पहले सभी बच्चे भारतीय संस्कृति से जुड़े हमारे ग्रंथों को जाने और उसे अध्ययन करने के लिए प्रेरित हो, तो क्यों ना आप 2 या 3 श्लोक हमें जरूर सुनाएं।
1: विद्या ददाति विनयम्, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वाधनमाप्नोति धनः धर्मः तथा सुखम्। विद्या हमें विनय देती है, विनय से मनुष्य योग्य बनता है, योग्य बनने के बाद मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति के बाद मनुष्य सुखी रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, हमें फल की चिंता करे बिना कार्य करते रहना चाहिए।
0: ये श्लोक हमारे जीवन को हर समय प्रेरित करता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।
1: अंत में मैं आप सबसे एक मंत्र उच्चारित करना चाहूंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का जीवन सुखी हो, सभी निरोग हो और सभी का जीवन मंगलमय हो।
0: काव्य बेटा, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे सभी बच्चों को इतना ज्यादा प्रेरित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: बच्चों, आज अपनी रेडियो दीदी को एक बात बताइए, क्या आपके घर में कभी कोई चीज पुरानी होकर बेकार हुई है, जैसे पुराने प्लास्टिक के बोतल, खाली डिब्बे या रद्दी कागज? मुझे पता है आप सभी का जवाब होने वाला है हाँ। हम क्या करते हैं उनका, कचरे में फेंक देते हैं या कबाड़े वाले को दे देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना हम। लेकिन आज हम आपको एक जादुई तरकीब सिखाने वाले हैं, उस जादू का नाम है रिसाइकलिंग। बच्चों, रिसाइकलिंग का मतलब है कचरे को कंचन, मतलब सोना जैसा कीमती बनाना, यानी बेकार पड़ी चीजों को पिघलाकर या बदलकर बिल्कुल नई और काम की चीजें बना देना। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये जादू आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे अपने घर की कोई पुरानी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए, इससे आप पेन होल्डर बना सकते हैं, गमला बना सकते हैं, रद्दी से आप आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बना सकते हैं। बच्चों, जब हम रिसाइकिल करते हैं तो हम अपनी धरती माँ की मदद करते हैं, इससे पेड़ कम कटते हैं, हवा साफ रहती है और कचरे का पहाड़ नहीं बनता है। हम सब अर्थ हीरोज बन जाते हैं, तो आप भी अर्थ हीरो बनना चाहते हैं ना? अगर बनना चाहते हैं तो कबाड़ से कीजिए जुगाड़। आज हम आपको बताते हैं 3R फार्मूला, जिसे हम सभी को सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए। 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग। रिड्यूस मतलब कम करना, प्लास्टिक का उपयोग हमें कम करना चाहिए। रीयूज, चीज़ों को फेंकने से पहले सोचें कि हम उनका दोबारा उपयोग कैसे कर सकते हैं। रिसाइकिल, जो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती उन्हें रिसाइकलिंग के लिए अलग डस्टबिन में डालें। बच्चों, आपके स्कूल में भी ऐसी एक्टिविटी होती ही होगी, कबाड़ से जुगाड़। अगर नहीं होती है तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर सभी बच्चे ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कभी भी संडे को आप सभी दोस्त मिल जाइए और इस एक्टिविटी को कीजिए। अगर आप सभी ऐसा करेंगे तो आप सब भी बन जाएंगे अर्थ हीरो। इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। तो आप सभी अर्थ हीरो बने और अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें। आप सभी अर्थ हीरोज को उनका मनोरंजन करने के लिए सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

बच्चों बाल कहानी के अंतर्गत सुनाते हैं हम आपको एक कहानी। कहानी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होती, वरन कहानी में छुपी होती है जीवन की एक अद्भुत सीख। एक समय की बात है, एक शांत गांव में आर्यन नाम का लड़का रहता था। वह वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। उसे दूसरों का मजाक उड़ाने में मजा आता था, दूसरों को परेशान करना उसे अच्छा लगता था। कभी वह अपने सहपाठियों को चिढ़ाता, कभी खेल के मैदान में उन्हें धक्का देता, या फिर कभी किसी को चोटिल करने पर हंसता। और उसका हमेशा एक ही जवाब होता, ये तो बस एक मजाक था। लेकिन हर किसी को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन स्कूल में कवि नाम का एक लड़का आया, बहुत ही शांत और दयालु था। छुट्टी के दौरान आर्यन ने कबीर का लंच बॉक्स छिपा दिया। कबीर की आंखों में से आंसू निकल गए। वह बहुत दुखी होकर अपना लंच बॉक्स ढूंढ रहा था और आर्यन हंस रहा था। टीचर को जब ये बात पता चली, शिक्षिका ने आर्यन को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कामों से दूसरों को कैसा लगता है? आर्यन ने कंधे उचका दिए, मैंने तो बस मजाक किया था, उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई। शिक्षिका ने प्यार से मुस्कुराते हुए आर्यन को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को अपने घर ले जाओ और जब भी आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ तो अपने घर के पास जो छोटा सा सुंदर सा तालाब है ना, उसमें फेंक देना। उस हफ्ते आर्यन ने तालाब में कई पत्थर फेंके। जल्द ही शांत पानी में लहरें उठने लगी, मछलियां तैरकर दूर चली गई और पक्षियों ने पानी पीना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद आर्यन अपने टीचर के पास गया और बोला, तालाब अब सुंदर नहीं दिखता। शिक्षक ने हाँ में सर हिलाया और कहा, जैसे हर पत्थर तालाब को बदल देता है, वैसे ही हर कठोर शब्द या कार्य किसी के दिल को बदल देता है। भले ही लहरें गायब हो जाएं, परंतु दर्द रह जाता है। आर्यन चुप था, वह समझ चुका था। वह कबीर के पास गया और उससे माफ़ी मांगी। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। उस दिन से आर्यन ने दर्द के बजाय दयालुता फैलाने का फैसला किया। उसने संघर्ष कर रहे सहपाठियों की मदद की, अपना लंच बॉक्स शेयर किया और खेलों के दौरान दूसरों का हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे लोगों ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। आर्यन एक अद्भुत बात सीख चुका था, किसी को रुलाने से कई ज़्यादा खुशी किसी को मुस्कुराने में मिलती है। इस कहानी से हमने सीखा कि दूसरों को दुख पहुंचाना भले ही हमें मजाकिया लगता हो, हमें आनंद लगता हो, लेकिन ये दर्द लोगों के दिल में हमेशा रह जाता है। लेकिन जो हम अच्छे कार्य करते हैं, खुशियां फैलाते हैं, उससे हमारे मन को भी संतोष मिलता है और आसपास भी खुशियों का संचार होता है। तो आप सभी बच्चे भी हमेशा अच्छे बनकर रहिए, अपने आसपास खुशियां फैलाइए, किसी को चोट नहीं पहुंचाइए, हमेशा अपने टीचर्स का और बड़ों का कहना मानिए। इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो दीदी शिल्पा को जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: युवानी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर STD कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें FM 103.1 MHz पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम फुलवारी एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिश का चैनल है। संध्या के 5:23 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज मुझे एक ऐसे विषय पर बात करने का मौका मिला है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी मानसिक शांति और हमारी पूरी खुशहाली से जुड़ा हुआ है। संतुष्ट रहने वाला सुखी होता है दोस्तों, और तुलना करने वाला हमेशा दुखी रहता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि जीवन का वो कड़वा और मीठा सच है जिसे हम जितनी जल्दी समझ लें उतनी ही हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों, आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें अपने दुख उतने परेशान नहीं करते आज के दौर में जितना दूसरों के सुख परेशान करते हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, चाहे वो किसी और का करियर हो, गाड़ी हो, घर हो, या किसी की सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट लाइफ हो, तो हम अपने पास मौजूद हर अच्छी चीज़ की अहमियत खो देते हैं। तुलना एक ऐसी दीमक है जो हमारे आत्मसम्मान और हमारी खुशियों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जब हम तुलना की दौड़ में शामिल होते हैं तो हम एक ऐसी रेस भाग रहे होते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो हमसे बेहतर किसी स्थिति में होगा। तो दोस्तों, क्या हम हमेशा दुखी रहेंगे? इसके विपरीत, जो इंसान संतुष्ट रहना सीख जाता है वो असल में राजा बन जाता है। संतोष का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें या आप आगे बढ़ने का सपना देखना बंद कर दें। संतोष का सीधा और सच्चा मतलब है जो आज हमारे पास है उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहें, और जो नहीं है उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करते रहें। जब आपके भीतर संतोष आता है तो आपका मन शांत हो जाता है। आप दूसरों की लकीर को छोटा करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी लकीर को बड़ा करने पर केंद्रित करते हैं। अगर हमें इस दुख से निकलकर सच्चे सुख की तरफ बढ़ना है तो हमें तीन चीज़ें अपने जीवन में अपनानी होंगी। सबसे पहले कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड। रोज सुबह उठकर उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपके पास हैं। एक स्वस्थ शरीर, परिवार, सर पर छत और दो वक्त की रोटी, ये भी दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक सपना है। खुद से प्रतियोगिता। अपनी तुलना सिर्फ आपके बीते हुए कल से होनी चाहिए। क्या आप आज कल से बेहतर इंसान बने हैं? अगर हाँ तो आप सही रास्ते पर हैं। सोशल मीडिया के दिखावे से दूरी। स्क्रीन पर दिखने वाली हर चमकती चीज़ सच नहीं होती। लोग केवल अपनी खुशियां शेयर करते हैं, अपने संघर्ष नहीं। इसलिए दूसरों की रील्स देखकर अपनी रियल लाइफ को कम मत आंकिए। दोस्तों, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत और इसी मुद्दे पर करेंगे थोड़ी सी और चर्चा वापस लौटकर।

दोस्तों, हमारी खुशियों की रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जब आप तुलना करने लगते हैं तो आप अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को सौंप देते हैं। आइए आज से एक संकल्प लें, हम अपनी मेहनत पूरी शिद्दत से करेंगे, आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन जो आज हमारे पास है उसका आनंद लेना नहीं भूलेंगे। याद रखिए, महलों में रहने वाला भी रो सकता है अगर उसके पास संतोष नहीं है तो, और एक झोपड़ी में रहने वाला भी सुकून की नींद सो सकता है अगर उसका मन संतुष्ट है। अपनी बातों को एक छोटे से शेर के साथ ख़त्म करूँगा। मलाल जो है सफ़र का तो मलाल ही रहेगा, जो मिल गया है उसे मुकद्दर समझो, जो नहीं मिला वो मलाल क्या करना। दोस्तों, संतुष्ट

दोस्तों, गर्मियों के मौसम में सूरज की तपिश से घर की छतों और दीवारें आग की तरह तपने लगती हैं। इससे घरों के अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें भारी भरकम एसी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या का एक बेहद आधुनिक समाधान खोज लिया गया है। चीन की साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी अनोखी सीमेंट तैयार किया है जो खुद ठंडा रखता है। ये सीमेंट सूरज की रोशनी और गर्मी को सोखता नहीं है, बल्कि उसे वापस अंतरिक्ष में भेज देता है। इसकी मदद से दिन के सबसे गर्म समय में भी इमारत का तापमान करीब 5.4 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है। आमतौर पर जो सीमेंट हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भारी मात्रा में गर्मी को अपने अंदर जमा कर लेता है, लेकिन इस नए सुपर कूल सीमेंट की बनावट अलग है। वैज्ञानिकों ने इसके छोटे कणों की रासायनिक संरचना में बदलाव किया है। इसमें मेटा सरफेस इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से ये सीमेंट सूरज की 96.2% रोशनी की रिफ्लेक्ट यानी वापस बिखेर देता है, जिससे सतह गर्म नहीं हो पाती। इस सीमेंट को सिर्फ ठंडा रखने के लिए ही नहीं बल्कि मजबूती के मामले में भी नंबर वन बनाया गया है। वैज्ञानिकों ने इसके कई कड़े टेस्ट किए हैं। ये सीमेंट एसिड जैसे खतरनाक लिक्विड, अल्ट्रावायलेट किरणों और कड़ाकड़ाती ठंड में भी चक्रों को भी आसानी से झेल सकता है। दबाव, खिंचाव और घिसावट के मामले में भी ये आम सीमेंट से कहीं ज़्यादा मजबूत साबित हुआ है। इस रिसर्च को राइटर गुओ लू ने बताया कि उन्होंने इस सुपर कूल सीमेंट का टेस्ट असली इमारतों की छतों पर करके देखा है। दोपहर 1 से 2 बजे के करीब बाहर का तापमान 101.1 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तब इस सीमेंट से बनी छत का तापमान बाकी चीज़ों से करीब 9.72 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम रिकॉर्ड किया गया। इसके विपरीत इसी मौसम में पारंपरिक सीमेंट 59 डिग्री सेल्सियस तक तप जाता है। ये सीमेंट केवल घरों को ठंडा ही नहीं रखेगा बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। मशीन लर्निंग की मदद से किए गए असेसमेंट से पता चला है कि इस सीमेंट के इस्तेमाल से नेगेटिव कार्बन इमिशन हासिल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है हवा से प्रदूषण और कार्बन को कम करने में भी मदद करेगा। सबसे अच्छी बात है कि इस जादुई सीमेंट को बनाने की प्रक्रिया बहुत महंगी नहीं है। इसे बड़े पैमाने पर आसानी से फैक्ट्रियों में बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका उपयोग घरों की छतों, दीवारों और बाहरी कोटिंग में बहुत आराम से किया जा सकता है। शहरों में सीमेंट के इस्तेमाल से भारी मात्रा में बिजली की बचत होगी, क्योंकि लोगों के घरों में एयर कंडीशनर चलाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। दोस्तों, अब सुनते हैं एक गीत और फिर बढ़ेंगे हमारे आज के अगले टॉपिक पर।

दोस्तों, आज ब्लूटूथ हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच और कारों का अहम हिस्सा बन चुका है। हर दिन करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्लूटूथ नाम किसी तकनीकी शब्द से नहीं बल्कि एक वास्तविक राजा के नाम से जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाते। ब्लूटूथ का नाम 10वीं शताब्दी के स्कैंडिनेवियन, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे राजा नाम पर रखा गया था। जानकारी के अनुसार राजा हराल्ड ब्लूटूथ गॉमसन के नाम ही ब्लूटूथ का नाम रखा गया था। इन्होंने 958 से 985 तक डेनमार्क और नॉर्वे पर राज किया था। बता दें कि ये राजा डेनमार्क और नॉर्वे के कुछ हिस्सों को एकजुट करने के लिए प्रसिद्ध थे। इतिहासकारों ने अनुसार राजा हेरोल्ड ने अलग अलग जनजातियां और क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने का काम किया था। इसकी वजह से जब एक नई वायरलेस तकनीक विकसित की जा रही थी तो उसके इंजीनियरिंग को लगा कि ये तकनीक भी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों को आपस में जोड़ने का काम करेगी, इसलिए इसका नाम ब्लूटूथ रखा गया। राजा हराल्ड को ब्लूटूथ उपनाम मिला हुआ था। माना जाता है कि उनके एक दांत का रंग गहरा नीला या काला दिखाई देता था, जिसकी वजह से उन्हें ब्लूटूथ कहा जाने लगा। हालांकि इतिहास में इसके पीछे अलग अलग कहानियां मिलती हैं, लेकिन यही उपनाम बाद में दुनिया की सबसे लोकप्रिय वायरलेस तकनीकों में से एक का नाम बन गया। सन 1990 के दशक में जब कई कंपनियां मिलकर एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पर काम कर रही थीं, तभी इंटेल के एक इंजीनियर ने इस नाम का सुझाव दिया था। उस समय केवल एक अस्थाई कोड नेम माना जा रहा था, बाद में अंतिम नाम चुनने की

यही तो ब्लूटूथ इतना लोकप्रिय हो चुका था कि इसे ही स्थायी नाम बना दिया गया। क्या आपने कभी ब्लूटूथ लोगों को ध्यान से देखा है? इसका प्रतीक कोई साधारण डिजाइन नहीं है, ये नॉर्डिक रूनिक अक्षरों का संयोजन है जो राजा हराल्ड ब्लूटूथ के नाम से शुरुआती अक्षरों में एच और बी को दर्शाता है। यानी ब्लूटूथ का नाम ही नहीं बल्कि उसका लोगों भी सीधा उस ऐतिहासिक राजा से जुड़ा हुआ है। अधिकांश लोग मानते हैं कि ब्लूटूथ का संबंध किसी तकनीकी शब्द, रंग या वैज्ञानिक अवधारणा से होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका नाम एक ऐसे राजा के सम्मान में रखा गया था जिसने लोगों और क्षेत्रों को जोड़ा था। ठीक उसी तरह ब्लूटूथ आज दुनिया भर में अरबों डिवाइसों को आपस में जोड़ने का काम करता है। दोस्तों अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे युवाणी।

0: घर बैठे जानिए हर एक फसल का सारा हाल, विशेषज्ञों से पूछिए खेती बाड़ी से जुड़ा कोई भी सवाल, पशुपालन हो या फिर लेनी हो बागवानी की जानकारी, अब किसान वाणी में आएगी सवाल पूछने की आपकी बारी। हर मंगलवार और गुरुवार शाम 7 बजे किसान वाणी में सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम और पूछिए सवाल। कॉल कीजिए 0144-270-2055 0144-233-3211 पर।
1: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन बने

0: परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

0: न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं आपसे कुछ देर बाद यानी कि 6:10 पर सुनेगा फिल्म संगीत, 6:28 से सुनेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

श्रोताओं, शाम 7 बजे सुनेगा कार्यक्रम ग्राम भारती और 7:30 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। श्रोताओं, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, उसके बाद रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, रात्रि 9:15 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप का सीधा प्रसारण और 10:45 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से।

रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार सुनेंगे दिल्ली से और 11:05 पर हमारी आज की सभा का समापन होगा। ये थे आज के शेष बचे कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, एक पेड़ 100 खुशियां, आइए हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाएं और प्रकृति को हरा भरा बनाएं। जल है तो कल है, हर बूंद बचाइए क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है।

ओटीपी, पासवर्ड और बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

स्वच्छ घर, स्वच्छ गली, स्वच्छ शहर, यही स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है श्रोताओं। वाहन धीरे चलाइए, हेलमेट और सीट बेल्ट हमेशा लगाइए। आपकी सुरक्षा आपके परिवार की खुशी है।

अभी आपने सुना सुरेश वाटकर और आशा भोसले को फिल्म ईमानदार में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत की अगली पेशकश।

श्रोताओं, ये गीत लिया है हमने इंतकाम फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र किशन ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और आइए श्रोताओं सुनते हैं इंसाफ कौन करेगा फिल्म में शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति को। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। FM बैंड 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबूराज में विधि मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, शिविर में तैयार घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार तेज करेगा। और राज्य के कई इलाके मानसूनी बारिश से तरबतर, आज अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो, ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों में किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि बीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होमोर्ज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होमोर्ज जल डमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज कोटपुतली बहरोड के मुंडावर में 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने शाहजहांपुर में ई लाइब्रेरी और सहकारिता भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए देशवासियों का सपना पूरा किया है। उन्होंने यमुना जल के ऐतिहासिक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के सूखा प्रभावित तक पानी पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने वहां विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को आसान बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7

0: टिकटों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत के मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है या नहीं। भारत में डिजिटल कानूनों के तहत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सिरोही जिले के आबूराज के ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज संपन्न हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से कार्यकुशलता, सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ये शिविर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी को संकल्पित करेंगे। श्री मेघवाल ने कहा कि शिविर में मंथन के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार को तेज करेगा।
1: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेज के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है, उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे ताकि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे भारत को विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी।
0: चिंतन शिविर में देश भर से आए विधि विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यायिक सुधारों, तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था, पारदर्शिता और जनसुलभ न्याय जैसे विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर ले जाना है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना हृदय, शरीर और मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में सहायक है। मंत्री ने साइकिल चलाने के विभिन्न स्वास्थ्य लाभों का उल्लेख किया। उन्होंने इसे शहरों में प्रदूषण और यातायात की समस्या का समाधान बताया। अमरनाथ यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,000 से अधिक श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि लगभग 2,000 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालटाल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर सेना के ट्रक और एक निजी एम्बुलेंस के बीच टक्कर में एम्बुलेंस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। यह हादसा सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में 22LGW के पास हुआ। गंभीर घायलों को तत्काल सूरतगढ़ के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदेश में जहां एक और कई जिले मॉनसून की बारिश से तर हो रहे हैं, वहीं कई जिलों को बरसात का इंतजार है। राजधानी जयपुर में सुबह से चल रही बादलों की लुका छिपी के बाद दोपहर में कई जगह तेज तो कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। सवाईमाधोपुर में सुबह झमाझम बरसात हुई। हनुमानगढ़ में भी जिला मुख्यालय सहित भादरा, संगरिया और पल्लू क्षेत्र में बारिश दर्ज की गई। पाली और आसपास के क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से किसानों ने खरीफ फसल की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। उदयपुर में शाम को हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। उधर बालोतरा और सिरोही जिले में सुबह से उमस और गर्मी

0: से जनजीवन प्रभावित है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के पूर्वी भागों में आगामी 5-6 दिन मानसून सक्रिय रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कल से भारी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है। आज लगभग सभी संभागों के जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमियों का आना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पक्षियों के आकर्षक समूह पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं।
1: केवलादेव की छिछली पानी की झीलों में समूह में खड़े इन पक्षियों की लंबी गर्दन, गुलाबी चोंच और संतुलित मुद्रा को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी उत्साहित रहते हैं, तो वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों सहित पर्यटक भी इनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित होते नजर आते हैं। ये पक्षी विशेष रूप से मुड़ी हुई चोंच की सहायता से छिछली पानी को छान कर सेवाल, छोटे जलीय जीव और लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में दो पारियों में आयोजित की गई। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां की थी। दो पारियों में हुई ये परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित हुई। सवाईमाधोपुर जिले में 35 और भीलवाड़ा जिले में 41 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा रखी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई। अब राज्य में विधि मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, शिविर में तैयार घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार तेज करेगा। और राज्य के कई इलाके मानसूनी बारिश से तरबतर, आज अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। इससे राजधानी जयपुर में यातायात सुगम होगा और लोगों का समय बच सकेगा। 41 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर शहर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों को जोड़ेगा, जिससे प्रहलादपुरा से सीकर रोड स्थित टोड़ी तक का सफर आसान होगा। इसमें 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेंगे। इस रूट को ऑरेंज लाइन भी कहा जाता है। इसका पहला हिस्सा पिंजरा पोल गौशाला तक बनेगा और दूसरा पिंजरा पोल से जवाहर सर्कल होते हुए एयरपोर्ट तक का 3 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसके साथ ही फेज 1 और फेज 2 को जोड़ने के लिए खासा कोठी में नया इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा। ये मेगा प्रोजेक्ट राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को एक नई गति देगा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिनों जयपुर आकाशवाणी परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद श्री वैष्णव ने MNIT में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद भी किया तथा नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। हाल ही में राजधानी में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बन रही है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से

0: सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। समारोह का समापन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। सहकार सप्ताह के तहत जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक सबके लिए सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित जन कल्याण की सशक्त विचारधारा है। उन्होंने कहा कि एकता, विश्वास और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना करते हुए समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बीते दिनों जिले में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा जगत के 276 दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैरवा ने दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ये भावना समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा का प्रतीक है। इससे हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायता मिलती है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में मनाए जाने वाला डॉक्टर्स डे राजधानी में समारोह पूर्वक मनाया गया। सवाई मानसिंह अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर्स ने निस्वार्थ सेवा की शपथ ली। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सह आचार्य डॉक्टर अदिति ने चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। इसी के साथ जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार। पहले आज री खास खबरां। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्य ने 25,000 करोड़ रुपया री सहायता रकम जारी करी। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सु आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबू राजमाए विधि मंत्रालय री कानी सु 2 दिन रा रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो शिविर माए तैयार घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार तेज करेला। और राज्य रा कई हल्का मानसूनी बिरखा सु तरबतर, आज घणकर जिला माए तेज बिरखारो अलर्ट। समाचारों रे साथ है मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्यां खातिर 25,000 करोड़ रुपयारी मुख्य सहायता रकम जारी करी। वणा 1 जुलाई सु इन अभियान रे सफलतापूर्वक लागू होने माते खुशी जताई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मार्फत रकम जारी करने रे पाछे श्री सिंह सगड़ा राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशां रा ग्रामीण विकास मंत्रियां साथ है वीबीजी रामजी योजना मारे कार्यान्वयन री समीक्षा भी करी। वणा कयो के आज जारी करी जी पहली किस्त रो लखस ओ पक्को करनो है के राज्यां रे कने पुख्ता रकम होवे ताकि मजूरी रो भुगतान 15 दिना माए करयो जा सके। वणा कयो के मनरेगा ने लागू होने माए 3 बरस सु 32 रो बखत लाग्यो हो जदे के विकसित भारत जी राम जी ने पूरे देश माए सिर्फ 1 दिन माए लागू कर दियो गयो।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान कयो के VBG रामजी योजना रे तहत मजदूरी दरामाए औसतन लगे टके 10% री बढ़ोतरी

0: करीजी है। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सु आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। ओ फैसलो पश्चिम एशिया संघर्ष माए युद्ध विराम रे पाछे होरमुज जल डमरू मध्य सु प्राकृतिक गैस री आपूर्ति फेरू होने रे पाछे करयो गयो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना माए कयो है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 माए बदलाव करयो गयो है। इन बदलाव रे तहत वहाँ खास आपातकालीन प्रावधाना ने हटा दियो गयो है, जिनके तहत सरकार ने देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी रे आवंटन में प्राथमिकता देने री इजाजत ही। होरमुज जल डमरू मध्य सु एलएनजी री खेप में रुकावट आने रे पाछे इन बरस मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम रे तहत ओ आपातकालीन हुकुम जारी करयो गयो हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज कोटपुतली बहरोड रे मुंडावर माए 24 करोड़ रुपया रे विकास कामारो उद्घाटन करयो। वणा शाहजहांपुर माए ई लाइब्रेरी और सहकारिता भवन रो लोकार्पण भी करयो। इन मौके माथे वणा कयो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र माए बड़ी सौगात देता हुआ देशवासियों रो ओ सपनो पूरो करयो है। वणा यमुना जल रे ऐतिहासिक समझौते रो जिक्र करता थका कयो के इनसु प्रदेश रे सूखा प्रभावित क्षेत्रा ताई पानी पहुंचाने रो मार्ग खुल्यो है। केंद्रीय मंत्री वठे न्यारा न्यारा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम माए भी भाग लियो। केंद्र सरकार सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम माथे फीस वाला विज्ञापन माए बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री प्रसार ने लेर मेटा ने कड़ी चेतावनी जारी करी है। सरकार इंस्टाग्राम ने एडी विषय वस्तु ने बधाओ देवन और इंडरी पहुंच ने सोरो बनावन वाला सगला विज्ञापन और सामग्री ने बंद करने रो हुकुम दियो है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटा सु 7 दिनारे माए स्पष्टीकरण मांग्यो है। सरकार इन बात री समीक्षा कर रही है कि प्लेटफॉर्म भारत रे मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशारो अनुपालन करयो है या नहीं। भारत माए डिजिटल कानूना रे तहत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री रो वितरण एक अपराध है। इसको पहले मंत्रालय वहाँ रिपोर्टारो संज्ञान लियो हो जिका माए कयो गयो हो कि इंस्टाग्राम माथे कुछ एक आपत्तिजनक सामग्री दिखाई जा रही है जिको बाल यौन शोषण ने बढ़ावो देवे है और अहलकारा ने मेटा सु जवाब मांगने रा हुकुम जारी करया है। ए खबर आप आकाशवाणी रे जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रहे हो। सिरोही जिलेरा आबू राजरा ज्ञान सरोवर माए विधि और न्याय मंत्रालय री कानी सु 2 दिन रो रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज पूरो वियो। समापन सत्र माए संबोधित करता थका केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो के एड़ा शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास रे माध्यम सु कार्य कुशलता सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव ने नूवी ऊर्जा देवेला। वणा कयो के ए शिविर विकसित भारत रा संकल्प ने साकार करण माए महती भूमिका निभाने खातिर सगड़ा ने संकल्पित भी करे। श्री मेघवाल कयो के शिविर माए मंथन रे पाछे तैयार करयो गयो घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार ने तेज करेला।
1: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेच के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है, उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे कि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी, भारत को विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी।
0: चिंतन शिविर माए देश भर सु आया विधि विशेषज्ञ न्यायिक अहलकारा और मंत्रालय रा मोटा अहलकार न्यायिक सुधारा तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था पारदर्शिता और जन सुलभ न्याय जड़ा मुद्दा माथे न्यारा न्यारा सत्रा माए चर्चा करी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नवी दिल्ली माए राखीजा फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल रा 80वां संस्करण माए भाग लियो। इन अभियान रो लखस लोगां रे व्यवहार माए बदलाव लाणो और वाने 32 सक्रिय जीवन शैली री कानी ले जानो है। मीडिया सु बात करता थका केंद्रीय मंत्री कयो के साइकिल चलाणो हृदय शरीर और मन ने स्वस्थ और तंदुरुस्त राखने माए सहायक है। श्री मांडविया साइकिल चलाने रा न्यारा न्यारा स्वास्थ्य लाभां रो भी जिक्र करयो। वणा इनने शहरा माए प्रदूषण और यातायात्री समस्या रो समाधान भी बतायो। श्री गंगानगर जिले रा सूरतगढ़ क्षेत्र माए आज सुवारे राष्ट्रीय राजमार्ग 62 माथे सेना रे ट्रक और एक निजी एम्बुलेंस रे बीचे टक्कर माए एम्बुलेंस माए सवार 3 जणारी मौके माथे ही मौत वेगी। हादसा माए 2 जणा गंभीर रूप सु घायल वेग्या।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनवा वाला हमारा सभी किसान भाई और बहना को प्रवीणा बहन की घनी घनी राम राम। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आप अच्छे ही होंगे। तो किसान भाइयों आज अपने ग्राम भारती कार्यक्रम में हम लेके आया हैं, पहले जो चर्चा करेंगे वो है ज्वार उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। साथ ही आपको भेंट वार्ता सुनवाएंगा जिसका विषय होगा पुष्प फलोद्यान एवं बोनसाई नर्सरी से अधिक आय कैसे प्राप्त करें। जानकारी देंगे ग्राम सोमेल तहसील मालाखेड़ा के प्रगतिशील किसान सतीश कुमार मीणा से। साथ ही लोकगीत सुनवाएंगे आपके मनोरंजन के लिए और जानकारी देंगे बारानी खेती में अधिक पैदावार कैसे प्राप्त करें। साथ ही देंगे आपको मौसम की जानकारी। तो किसान भाइयों आते हैं अपनी ज्वार उत्पादन की उन्नत तकनीक जो आज की चर्चा है। किसान भाइयों मोटे अनाजों में मक्का के बाद ज्वार का जो ज़्यादा उपयोग की जाने वाली फसल है उसका नाम आता है। हमारे जो देश है उसमें शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों में ज्वार एक प्रमुख फसल है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह अच्छा उत्पादन देती है। जल्दी वृद्धि के कारण दाने की अच्छी उपज के साथ बड़ी मात्रा में चारा भी प्रदान करती है। किसान भाइयों इस फसल को सूखे चारे के रूप में प्रयोग करने के लिए उगाया जाता है। उन्नत किस्मों के प्रयोग, उचित समय विधि से बुवाई, उचित समय पर पौध संरक्षण जैसी तकनीकों को अपनाकर किसान भाई ज्वार अधिक उपज से चारा प्राप्त कर सकते हैं। बात करें सबसे पहले किसान भाइयों इसकी जलवायु और मिट्टी के बारे में। ज्वार गर्म जलवायु की फसल है, इसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। किसान भाइयों ज्वार में अधिक तापमान, पानी की कमी, पानी की अधिकता, इसको सहन करने की क्षमता अन्य फसलों से अधिक होती है, इसलिए ज्वार विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में भी उगाई जाती है। जैसे हल्की मिट्टी की अपेक्षा यह भारी मिट्टी इसके लिए ज़्यादा अच्छी होती है। यह हल्की अम्लीय से लेकर मध्यम क्षारीय मिट्टी में, यानी कि जिसका पीएच मान 6.8 से 6.5 तक उगाई जा सकती है। किसान भाइयों इसकी उन्नत किस्मों की हम बात करें तो इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम बीज की किस्म, उसकी गुणवत्ता की बात करें तो यह बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। किसान भाइयों इसकी कुछ संकुल किस्मों की हम बात करें जैसे CSV 15, CSV 17, CSV 20, CSV 22, CSV 23, SSV 84 और प्रताप ज्वार 1430। कुछ संकर किस्में हैं जिनकी हम बात करें जैसे CHS 14, CSH 16, CSH 17 और CSH 27। किसान भाइयों कुछ चारे की किस्में भी होती है जैसे राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 2, प्रताप चरी 1080। ये प्रमुख कुछ चारे की फसलें हैं। किसान भाइयों अच्छे अंकुरण के लिए हम खेत की उपयुक्त तैयारी करते हैं। जैसे बारिश के पहले जून के महीने में हम 20 से 25 गाड़ी यानी कि 10 से 15 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद खेत में डालकर अच्छी तरीके से हम मिला लें। इसके 20 से 25 दिन के बाद हम देसी हल या फिर डिस्क प्लाउ से 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर दें। पहली बारिश के बाद 2 या 3 बार हैरो के द्वारा हम क्रॉस जुताई करें, फिर मिट्टी के ढेले दबाने एवं समतल हल करने के लिए हम उसका पाटा लगाते हैं जिससे खेत में उपस्थित जो भी खरपतवार और पुरानी फसल के अवशेष होते हैं वो नष्ट हो सके। किसान भाइयों हम बीज की बुआई के बारे में बात करें तो इसका उचित समय लगभग जुलाई के प्रथम पखवाड़े में हम कर लेते हैं। किसान भाइयों रबी की फसल के लिए सितंबर से तीसरे हफ्ते से लेकर अक्टूबर के पहले हफ्ते का समय उचित होता है। हम बीज दर, अंतराल से और गहराई की बात करें तो बीज जो प्रमाणित बीज है वही उपयोग में लेना चाहिए। किसान भाइयों

सिर्फ संकर किस्मों के बीज हर साल नए खरीदने पड़ते हैं। अन्य उन्नत किस्मों के बीजों को हम दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। बुआई के लिए चयन किया हुआ बीज रोग, कीट और खरपतवारों के बीजों से मुक्त होना चाहिए। किसानभाइयों, बीज उपचार, जैसे कि हम फफूंदनाशी से बीज उपचार कर लें, यानी कि फसल को विभिन्न जो बीज जनित बीमारियां उससे बचाने के लिए हम बीज पर हल्के पानी का छिड़काव करके 3 ग्राम थीरम नामक दवा से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। साथ ही उपचार के बाद हम 10 मिनट तक छाया में सुखाने के बाद बुवाई और जैव उर्वरक से उपचार करें। किसान भाइयों, बुवाई से पहले 1 लीटर या फिर आवश्यकता के अनुसार पानी में 125 ग्राम गुड़ या फिर 5 से 10 ग्राम साधारण गोंद घोलकर 250 ग्राम एजेटोबैक्टर या फिर एजोस्पिरिलियम मिला लें। इस घोल को हम 10 से 12 किलोग्राम बीज पर छिड़कते हुए हल्के हाथ से अच्छी तरह मिला दें ताकि बीजों पर घोल की बारीक परत जम जाए। बीज को 30 मिनट तक छाया में सुखा के उसके बाद शीघ्र ही 24 घंटों के अंदर बुवाई कर दें।

0: या फिर 5 से 10 ग्राम साधारण गोंद घोलकर 250 ग्राम एजोटोबैक्टर या फिर एजोस्पिरिलियम मिला लें। इस घोल को हम 10 से 12 किलोग्राम बीज पर छिड़कते हुए हल्के हाथ से अच्छी तरह मिला दें ताकि बीजों पर घोल की बारीक परत जम जाए। बीज को 30 मिनट तक छाया में सुखा के उसके बाद शीघ्र ही 24 घंटों के अंदर बुआई कर दें। किसान भाइयों, तरल जैव उर्वरक को 500 मिलीलीटर प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर सीधे उपचारित कर सकते हैं। जैव उर्वरक से बीज उपचार सदैव फफूंदनाशी एवं कीटनाशी से उपचार के बाद ही करना चाहिए। यह तो थी जैव उर्वरक से बीज उपचार की विधि। किसान भाइयों, इस तरह से हम ज्वार उत्पादन की जो अभी हमारे जो समय चल रहा है वो है उपयुक्त समय चल रहा है जुलाई का प्रथम पखवाड़ा, तो इस तरह से हम अपने ज्वार की उत्पन्न उत्पादन यानी कि शुरुआत से ही हम उत्पन्न जो उत्पादन है उसकी उन्नत तकनीक हम कर सकते हैं। तो ये तो थी किसान भाइयों ज्वार उत्पादन की विधि। अब किसान भाइयों आपको सुनवा देते हैं एक भेंट वार्ता जिसका विषय है पुष्प फलोद्यान एवं बोनसाई नर्सरी से अधिक आय पाए। जानकारी दे रहे हैं ग्राम सुमेल तहसील मालाखेड़ा के प्रगतिशील किसान सतीश कुमार मीणा। आइए सुनते हैं वो हमें क्या अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं।
1: किसान भाइयों राम राम, आज हम आपकी भेंट करवाते हैं प्रगतिशील किसान। हाँ जी, आपका शुभ नाम बताइए, आपका परिचय बताइए।
2: सर, मेरा नाम सतीश कुमार मीणा है और मैं मालाखेड़ा ग्राम सुमेल का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ खेती करता हूँ सर।
1: जी, कितने दिनों से आप खेती करते हैं सतीश जी?
2: सर, पिछले 10 साल से मैं खेती का काम कर रहा हूँ जिसमें मैं सब्जी का और फलों का, फूलों का और इसके अलावा पौध भी तैयार करता हूँ सर।
1: जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अपने यहाँ पर किस किस तरह के पेड़ यानी कि बागवानी में हमारे किसान भाई लगा करके लाभान्वित हो सकते हैं।
2: मैं एक सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि जो आजकल क्रेज चल रहा है, जो नए नए पौधे नर्सरी वाले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि पहले सागवान का चला था कि सागवान की खेती कीजिए, आप सागवान का पेड़ बहुत महंगा बिकता है, या फिर आप अभी जो चंदन का चल रहा है, चंदन का बाग लगाइए, चंदन से अच्छी पैदावार होती है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मुझे समझ में आती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर, कि पौधा तो हम किसी भी चीज का यहाँ लगा सकते हैं। बादाम का भी हमारे यहाँ लग जाएगा, इलायची का भी हमारे लग जाएगा, हमारे यहाँ चंदन का भी लग जाएगा, सागवान का भी लग जाएगा। लेकिन हर एक जो पौधा होता है उसका नेचर होता है कि किस एनवायरमेंट में, किस नेचर में, किस मौसम में वो फल देगा। अब बादाम का पौधा लगा दोगे आप यहाँ पर तो बादाम उसमें अच्छी क्वालिटी की नहीं आएंगी, जिसका हमें मार्केट में जो प्राइस मिलता है, मार्केट में जो क्वालिटी चलती है उस क्वालिटी का बादाम हमको नहीं मिल पाएगा। कुछ किसानों ने पहले सागवान के बहुत पेड़ लगाए थे लेकिन पेड़ या तो छोटे थे तभी मर गए, या कुछ बड़े होने के बाद मर गए, या फिर 15-20 साल का पेड़ हो गया तो भी वो क्वालिटी की लकड़ी नहीं बना पा रहा जो बाजार में जिसका अच्छा दाम मिले। इसी प्रकार चंदन का है कि चंदन का भी बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है नर्सरी वाला, तो भाई पैसे लेके अपना पेड़ बेच देता है किसान भाई, उसमें मेहनत करता है 4 साल 5 साल 10 साल। और जितना मैं जानता हूँ कि इतना जो चंदन का पेड़ है 10 से लेके 15 साल तक का जो पेड़ होगा उसके बाद ही उसकी कीमत तय होती है। उसके अंदर ड्रिल करके उसका बुरादा निकाला जाता है, उसकी खुशबू है, उसमें कितना तेल है, उसके आधार पर उसकी कीमत आकी जाती है और उसी के आधार पर वो पेड़ बिकता है। तो आप 10 से 15 साल तक उस पेड़ को पालो, लगाओ और वो कीमत हमको बाजार में जाके ना मिले तो उससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल के तौर पर 5-10 पेड़ लगा सकते हैं, ज़्यादा ना लगाएं। जो मेरा मानना है, जो मेरी राय है, वो उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पौधे होते हैं, हमारे सबसे ज़्यादा जो खटास वाला पौधा है, साइट्रस वेराइटी जिसको हम कहते हैं, नींबू है, मौसमी है, किन्नू है, संतरा है, इसका लगाइए। इसके अलावा हमारे यहाँ अमरूद बहुत अच्छा चलता है, अमरूद का लगाइए आप। अमरूद का बहुत अच्छी वेराइटी आप मार्केट में आजकल आ रही है, आप ताइवान पिंक लगा सकते हैं, वियानार लगा सकते हैं, इसके अलावा थाई पिंक आ रहा है वो भी आप लगा सकते हैं। 1 kg अमरूद है जो बहुत सॉफ्ट होता है खाने में और साइज भी अच्छा आता है, तो इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, ये हमारे एनवायरनमेंट में अच्छा चलता है। तो आप प्रकृति में जो चीज़ हमारी होती है, जिस हिसाब से हमारे जो पौधा चलता है, वो ही आप यहाँ लगाइए, ना कि जो पौधा नहीं चलता उसको आप लगाने की कोशिश करें। तो मेरा मानना है कि वो प्रैक्टिकल तौर पे आप लगा सकते हैं, अगर सक्सेस होते हैं तो फिर आप क्वांटिटी बढ़ाइए।
1: यहाँ की जलवायु के अनुसार सतीश जी, आप हमारे किसान भाई को बताएं आपने कौन कौन से पेड़ लगा रखे हैं आप?
2: अब देखिए, प्रैक्टिकल के तौर पर अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल के तौर पर मैंने यहाँ अपने हरिमन 99 सेब की वेरायटी वो लगाया था। यहाँ पे फल तो आता है लेकिन वो साइज नहीं मिल पाएगा, ना वो टेस्ट मिल पाएगा जो हमको मार्केट में होता है। लोग कह रहे हैं कि भाई हरिमन 99 का बाग लगा लेते हैं, उसमें अच्छा फल आएगा, सेब से अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन वो साइज, वो क्वालिटी हमको यहाँ नहीं मिल पाएगी। फल आएगा तो फल की क्वांटिटी भी हमको कम मिल पाएगी। तो मेहनत, मुझे लगता है कि मेहनत करना इस फील्ड में अच्छा है। और इसके अलावा मैंने यहाँ अपने आम का पेड़ लगा रखे हैं, आम की वेरायटी है जो हमारे पास, जैसे अभी नया चल रहा है बनाना मैंगो चल रहा है।

0: जो एक केले की तरह होता है, लंबा साइज है, वो भी प्रैक्टिकल तौर पे हम लगा के देख रहे हैं, 4 से 5 पेड़ हमने लगाए हैं। इसके अलावा नीलम,
1: उसकी विशेषता क्या है, किस तरह
0: उसका है कि साइज एक तो लंबा आता है उसका, केले जैसा शेप होता है, और वेट भी उसका अच्छा होता है, और टेस्ट भी उसका अलग आता है। इसके अलावा नीलम वेराइटी है हमारे पास में, इसमें गीदा ज्यादा होता है, गुठली पतली होती है, और खाने में बहुत टेस्टी होता है। और जो आपके दशहरी चलता है वो तो हमने लगा ही रखे हैं, वैसे ही तो अपने नॉर्मली यहाँ हो जाता है। और इसके अलावा मौसमी का हमने यहाँ लगा रखी है, और सबसे ज्यादा कटहल का हमने यहाँ पर रुपाई की है, क्योंकि कटहल के हमारे पास 40 से 50 साल पुराने पेड़ हैं, जिनमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और फल भी अच्छी क्वांटिटी में आता है। तो हमने 4 बीघा में भी कटहल के रुपाई करी है, कटहल है, और इसके अलावा आम की काफी सारी वैरायटीज हमने लगाई है, तो वो भी हम अच्छा प्रोडक्शन इनसे ले रहे हैं।
1: आपने वैरायटी लगाई, जैसे आम की अपने बात करें तो,
0: आम की हम बात करें तो आम्रपाली है हमारे पास में, दशहरी है, बनाना मैंगो है, इसके अलावा मियाजाकी, जो कहते हैं कि मियाजाकी मैंगो बहुत महंगा बिकता है, लेकिन जो सुनने में आया कि मियाजाकी जो है जहाँ उमस भरी जगह होती है, समुद्र के किनारे या बारिश का जहाँ मौसम होता है, वहाँ अच्छी पैदावार देता है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकल तौर पे एक दो पेड़ लगाएं। और दशहरी हमने काफी प्लांट लगाए, दशहरी का हमारे यहाँ अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। कटहल का हमने लगाया है, मौसमी का लगाया है, किन्नू है, संतरा है, चकोतरा है, ये सभी वैरायटी हमने हमारे खेत में लगाई है।
1: पपीते की भी लगा रखी है, कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है?
0: पपीता में हमने एक तो ग्रीन बेरी लगाई थी, और इसके अलावा रेड लेडी, ताइवान रेडी लगाई थी, ये दो वैरायटी हमने लगाई थी, और उसका प्रोडक्शन भी हमारे पास में बहुत अच्छा आया था। और एक हम देसी सीड्स और रेड लेडी को मिक्स करके एक नई ब्रीड है जो हमारे यहाँ खेत में ही पैदा हुई है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि प्रोडक्शन जो उनमें आता है वो हम क्या ग्राफ्टिंग करके उसका प्रोडक्शन लेते हैं, एक ही पेड़ में हम 5 से 7 जगह से हम उसको पपीता की ग्राफ्टिंग करते हैं, और प्रोडक्शन जो है दोनों वैरायटी का मिक्स आता है, यानी साइज भी आपको लंबा मिलेगा और कम हाइट से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप रेड लेडी की बात करें तो 1 फीट से आने लगता है, और आपका ग्रीन बेरी करें तो वो थोड़ा ऊपर से आता है, तो इसमें मिड में से फल आना स्टार्ट होता है, और एक बहुत अच्छी वैरायटी हमको यहाँ देखने को मिलती है। सर
1: जी, सतीश जी, ये तो बात हुई आपके पेड़ों के बारे में, अब हमारे किसान भाई को आप बताएं कि जैसे आपने फलों के पेड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, इसी तरह से फूलों के बारे में अपन बात करते हैं, तो फूलों में आपने कौन कौन से फूलों की और कौन कौन सी वैरायटियां लगा रखी हैं, इसके बारे में भी हमारे किसान भाई को बताएं।
0: देखिए, फूलों में हम बात करें, एक तो मार्केट के हिसाब से प्रोडक्शन लें, या फिर हम नर्सरी के हिसाब से प्रोडक्शन करें।
1: मार्केट के हिसाब से बात करते हैं पहले तो।
0: जी, मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो गेंदा जो हमारे यहाँ अच्छे क्वांटिटी में और अच्छे तरीके से होता है, हमारे मालेखेड़ा के आसपास के क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से किसान लोग कर रहे हैं। इसके अलावा गुलाब की खेती जो हमारे यहाँ हो रही है, गुलाब भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा चलता है। फूलों की अगर हम बात करें,
1: आपने कौन कौन से लगा रखे हैं इसके बारे में?
0: जी, गुलदावरी की मैं बात करूंगा, गुलदावरी आप एक सिस्टमेटिक तरीके से लगा सकते हैं, जैसे नवंबर से लेकर दिसंबर तक आपको गुलदावरी है जो फूल देती है, और मई से लेकर जून में इसकी कटिंग लगती है। आप कटिंग मार्केट में 1 से 2 रुपए में आसानी से अवेलेबल हो जाती है, आप कटिंग लाइए और इसके कटिंग की रुपाई मई और जून में कीजिए, और नवंबर दिसंबर में आप इसका अच्छा प्रोडक्शन लेके और अच्छे दामों में इसको हम बेच सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के हिसाब से गेंदा और गुलाब की जो हम बात कर रहे थे, दोनों बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे चलता है। तो बेसिकली आप, इसके अलावा एक क्रेसेंथीमम और आता है, व्हाइट कलर और येल्लो कलर, दो कलर में चलता है, गुलदावरी जैसे उसका फूल होता है, और प्रोडक्शन उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आता है। तो इसमें जो फूल है वो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने में देखने को मिलेगा, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है, और इसके अलावा मार्च और अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने भी आपको इसका जो फूल है वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा हमने नर्सरी के पर्पज से जो कर रखा है, तो हम बोनसाई प्लांटों का जो है कलेक्शन हमारे पास में है। हमारे पास
1: कितने पौधे हैं बोनसाई के आपके?
0: बोनसाई के हमारे पास अभी 1 लाख जो पौधे हैं अभी अवेलेबल है हमारे पास में, और 500 से ज्यादा कलर इसमें हमारे पास आप अवेलेबल,
1: वैरायटियां कलर अलग अलग है।
0: हाँ, कलर अलग अलग है, जैसे आपका लाल है, पिंक है, मतलब गुलाबी है, पीला है, अलग अलग तरह के आपको 500 कलर हमारे पास मिल जाएंगे।
1: नर्सरी के पर्पज से आपने बोनसाई लगा रखी है, ये किस तरह का पौधा होता है, किस तरह से आप यानी मार्केट में बेचते हैं, और ये सारी जानकारी बताएं।
0: देखिए, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो वैरायटी अपने यहाँ होती है उस वैरायटी का प्रोडक्शन कीजिए, चाहे वो फल में हो, चाहे वो नर्सरी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें तो जो अपने यहाँ पर होता है, अपने एनवायरमेंट में जो चीज होती है, तो वो चीज आप उगाइए। तो मैंने जो बोनसाई प्लांट जिसको मैं कह रहा हूँ, उसका नाम है एडेनियम, मतलब डिजर्ट रोज भी इसको कहते हैं, रेगिस्तानी गुलाब। गुलाब की तरह इसका फूल होता है, पर इसमें खुशबू नहीं आती है, लेकिन इसको गमले में लगाया जाता है, और गमले के अंदर बहुत अच्छा ही लगता है, इसकी जो जड़ें हैं वो एकदम घुटमुट हो जाती हैं और बहुत शानदार दिखने में लगता है। और फूल आपके इसमें फरवरी से लेके आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक फूल देखने को मिलता है। सर्दियों में पतझड़ हो जाता है और उसमें कोई फूल नहीं आता है, फिर फरवरी में वापस से फूटना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास इस पेड़ के 500 कलर हैं जो हम थाईलैंड और वियतनाम से हमने इम्पोर्ट किए हैं, वहाँ से हमने कलर मंगवाए हैं, और बीज भी हम पहले वहीं से लेते हैं, लेकिन बीज का प्रोडक्शन हम यहीं करने लग गए हैं। इनका हाथों से पोलिनेशन करवाना होता है और बीज का प्रोडक्शन

0: खुद कर रहे हैं, और इसके अलावा दो वैरायटी भी हमने क्रॉस करा के खुद की बनाई भी हैं, जो हमारे यहाँ डेवलप करी हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है, आप फ्रूटिंग में चाहो तो उसमें भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, चाहे तो ये पेड़ लगा कर भी आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। और आप आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है तो मार्केटिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपको कहीं बेचने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन भी चीज़ों को बेच सकते हो।
1: तो देखिए सतीश जी, आपने फूलों के बारे में, फलों के बारे में, नर्सरी के पौधे हैं उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बहुत विस्तृत जानकारी दी, लेकिन चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप संदेश के रूप में, जैसे आपने बताया जलवायु के हिसाब से इस तरह से पौधे लगाएं जो यहाँ काम दे, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अपनी पारंपरिक खेती है जो हमारे चल रही है, उससे अलग अगर आप करोगे, आप कुछ जो अपने यहाँ पे होता है वो प्रैक्टिकल के तौर पे आप शुरुआत कीजिए, एक सीजन में आप सीखेंगे, फर्स्ट टाइम लगाएंगे, दूसरी बार में आपको नॉलेज होगी भाई इस तरीके से, तीसरी बार में आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो आप शुरुआत कीजिए और जो अपनी पारंपरिक खेती है उससे थोड़ा हटिए, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका जो सालाना आय है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और आप बहुत अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। तो बागवानी में आप अच्छा कर सकते हैं, इसके अलावा आप पेड़ पौधे जो अपने यहाँ होते हैं, बोनसाई प्लांट जिनको हम कह रहे हैं, या इसके अलावा आप गुलदावरी के जो फूल है वो भी बेच सकते हैं, या नर्सरी को भी आप बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से राजस्थान में या राजस्थान पे आसपास के क्षेत्र में पूना, आंध्रा, कोलकाता से ही प्लांट्स आते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्ट इतना लग जाता है कि जितने का प्लांट नहीं होता। तो आप यहीं से उगाकर यहीं से किसानों को उपलब्ध कराइए, तो बहुत अच्छा स्कोप है, आप बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं।
1: जी देखिए, आपने हमारे किसान भाइयों को एक वैज्ञानिक की तरह समझाया, तो जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, शुक्रिया सर।
2: धन्यवाद, प्रगतिशील किसान से बातचीत कर रहे थे आप, बातचीत कर रहे थे सतीश कुमार मीणा, जानकारी दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे विजय विश्राम लाल जाट। तो किसान भाइयों, अब हो गया है आपके मनोरंजन का समय, और लेकर चलते हैं आपको प्यारे से एक गीत की तरफ, जिसके बोल है मर जाई रे, सीमा मिश्रा संजय बागी की आवाज में, और एल्बम का नाम है बागा की मोरनी। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

हाँ तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना लोकगीत और उम्मीद करते हैं कि आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। किसान भाइयों, अब जानकारी देते हैं आपको बारानी खेती के बारे में। बारानी खेती किसान भाइयों बात करें तो एक ऐसी खेती होती है जो सिंचाई किए बिना ही हमारी कृषि करने की एक तकनीक है। यह कहें तो कि यह शुष्क जो भूमि है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, दूसरे शब्दों में कहें तो शुष्क क्षेत्रों में की जाने वाली आधुनिक और वैज्ञानिक खेती ये बारानी खेती कहलाती है। किसान भाइयों, कम व असामयिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ पर नमी को संरक्षण करके फसल उत्पादन की तकनीक को इस प्रकार अपनाया जिससे फसलों की अधिक से अधिक हम पैदावार ले सकें, वो बारानी खेती कहलाती है। बारानी खेती में उन्नत कृषि क्रियाएं अपनाकर अधिक उत्पादन लेना और साथ ही भूमि में जो संचित नमी है उस पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, भूमि में पानी सोखने की क्षमता और जल धारण उत्पादन बढ़ाने हेतु रबी फसल कटने के तुरंत बाद खाली खेतों की गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर लें। साथ ही इसमें जो हानिकारक कीड़े, बीमारियों के जीवाणु और खरपतवार

द्वार भी नष्ट हो जाते हैं। वे भूमि का तापमान जल धारण करने की क्षमता भी इससे बढ़ जाती है। गर्मी की जुताई कम वर्षा वाले रेतीले क्षेत्रों में न करें, साथ ही वर्षा के जल को समान रूप से खेत में फैलने देवे, जिससे वर्षा का जल संरक्षित हो सके, बहकर खेतों से बाहर नहीं जाए। इस संरक्षित नमी में लंबे समय तक वर्षा नहीं होने पर भी हम फसलों में सूखे का प्रभाव नहीं होता है, अथवा होता है तो बहुत कम होता है। अब बात करते हैं बारानी खेती में जुताई के बारे में। तो किसान भाइयों, खेतों में ढाल के विपरीत थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेड़ बनाए, साथ ही वानस्पतिक अवरोध लगाएं, जिससे वर्षा का जल रुककर भूमि में ही रह सके। साथ ही पड़त छोड़े गए खेतों में खरपतवारों को नष्ट करने एवं जल सोखने की क्षमता बढ़ाने के लिए वर्षा ऋतु में 2 से 3 बार आप जुताई कर लें, क्योंकि अंतिम वर्षा जुताई ये बुवाई का जो अंतराल है वो लंबे रहता है, इसलिए नमी के संरक्षण हेतु आप पाटा लगाएं। जुताई के लिए आप बक्सर का उपयोग करने से नमी का संरक्षण भी होता है। किसान भाइयों, प्रत्येक तीसरे वर्ष वर्षा आरंभ होने के 15 से 30 दिन पहले खेत में आप 20 से 25 टन प्रति हेक्टर सड़ी हुई देसी गोबर की खाद अवश्य डाल दें, जो पोषक तत्व प्रदान करने के साथ साथ भूमि में जो जीवांश है उसकी वृद्धि करता है, साथ ही नमी संचय क्षमता भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, बारानी खेती में उर्वरकों की मात्रा की बात करें तो यूरिया में केवल 46% नत्रजन होती है, जबकि हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नत्रजन होती है। वायुमंडल की इस नत्रजन को पौधों को जीवाणु खाद जैसे राइजोबिया एवं एजेक्टोबैक्टर आदि का उपयोग भी हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवी के रूप में ग्रंथि यानी कि गांठ बनाकर रहते हैं। यह वायुमंडल से नत्रजन प्राप्त करके सीधे पौधों को उपलब्ध करा देते हैं। साथ ही एजेटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से जमीन में रहते हैं और वायुमंडल की नत्रजन को जमीन में पौधों के लिए उपलब्ध अवस्था में छोड़ देते हैं। इस प्रकार ये भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, इस तरह से आप फास्फोरस घोलक जीवाणु पीएसबी जीवाणु खाद जमीन में उपलब्ध फास्फोरस को घोलकर पौधों को उपलब्ध करा देते हैं। इससे पहले खेतों में उपयोग किए बिना डीएपी व सिंगल सुपर फास्फोरस का भी हम समुचित उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज को कल्चर से उपचारित करने के लिए आप 250 ग्राम गुड़ और आवश्यकता के अनुसार पानी गर्म करके घोल बनाएं। घोल के ठंडे होने पर इसमें 600-700 ग्राम आप जीवाणु खाद मिलाएं। इस प्रकार इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर में बोए जाने वाले बीज इस प्रकार मिलाएं कि बीजों पर एक समान परत चढ़ जाए। इसके बाद बीजों को छाया में सुखाकर बुवाई करें। इस तरह से किसान भाइयों, हम बारानी खेती के लिए शीघ्र पकने वाली फसल, सूखा सहन करने वाली, अधिकतम उत्पादन देने वाली फसलों की किस्मों का चयन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब हमारा समय हो गया है, हम आपको देते हैं जाते जाते मौसम की जानकारी। आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। और बात करें रात की तो बारिश भी कहीं कहीं हो सकती है। तो किसान भाइयों, ये तो हमारा आज का ग्राम भारती कार्यक्रम। अब आपकी बहन प्रवीणा को दीजिए कार्यक्रम से जाने की अनुमति। घने घने राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती। ये आकाशवाणी अलवर का सर इसका चलन है FM बैंड 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं ICC महिला T20 विश्व कप जो लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जा रहा है, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया इनका

0: match to be played between Australia and England of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
1: नमस्कार, फर्स्ट बॉल 20 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुनीश जॉली और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम एक बार फिर से पहुंच रहे हैं इंग्लैंड के लंदन में और वहां लॉर्ड्स का मैदान इंतजार कर रहा है। एशेज की पुरानी राइवलरी कह लीजिए जो T20 क्रिकेट में आ गई है, या फिर दिग्गज टीमें जिनको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, एक होम टीम है इंग्लैंड और दूसरी ऑस्ट्रेलिया और आज विमेंस वर्ल्ड T20 का फाइनल है लॉर्ड्स में। मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद है।
2: ओ मनीष, आई मस्ट टेल यू द पैल्पिटेशन इज रियली हाई बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज लिटिल हिट एंड मिस। वी आर मिसिंग इंडिया एट द मोमेंट बट राइट नाउ वी विल ओनली टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया प्योर डोमिनेंस सुपर ऑरा एंड टुडे बिकॉज इट्स लॉर्ड्स, लॉट मोर टू हैपन बट वी हैव मच मोर टू टॉक अबाउट इन द स्टूडियो बिकॉज वी हैव आर सुपर सुपर एक्सपर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चेतन Sharma, former Indian fast bowler, and needless to say, 1987's World Cup hat-trick hero, the most loved Chetan. Welcome to
3: you. बहुत सारी बातें आपसे स्टूडियो में करने वाले हैं, स्वागत है आपका। Last and not the least, by any means, Mona Partha Sarthy, senior sports journalist. Welcome again. We have a lot more to talk about game and what exactly are the nitty-gritties, and you're the best person to talk about it.
4: Thank you.
1: बहुत बहुत स्वागत है चेतन भाई। आप ही से शुरू करते हैं, वर्ल्ड कप का एक और फाइनल लॉर्ड्स, लॉर्ड्स की बात करते हैं। 1983 वर्ल्ड कप भूलता नहीं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आज का मैच कैसे देखते हैं आप?
5: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो आप रिवलरी की आप मतलब जितनी बड़ी बात कर लें उससे कम होगा। इंडिया पाकिस्तान की आप बात करते हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंग्लैंड अपने घर में कोई वर्ल्ड कप का मैच अभी तक हारा नहीं है और ये एक ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर मैच अगर तीन मैचेस खेले गए हैं लॉर्ड्स में, दो टीमों ने चेज करते हुए मैच जीता और एक टीम ने डिफेंड किया है और वो टीम कौन सी है? इंग्लैंड। तो बहुत चीजें हैं जो इंग्लैंड के पक्ष में जाती हैं, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अनबीटन साइड्स हैं यहां हमारे सामने। जो अच्छी क्रिकेट आज खेलेगा ये ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा।
3: वैशाली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके बारे में बात करना वाकई जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात है

कृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन्स से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की बचे हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के जिस्म को सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद हो गए।

एक और ऐतिहासिक जंग भारत के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग में फिरोजपुर की राजा मोहतम चौकी पर पुनः कब्जा करने, इस इलाके में फतह हासिल करने, कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए सीमा सुरक्षा बल के जाबाज अफसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के टांबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजस्वी कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने की जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर।

0: बहादुर, अबे ओ बहादुर के बच्चे।
1: आया साहब, आया साहब।
2: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
0: अबे गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है? आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
2: वो तो मालूम है साहब, पर आज साहब को भी तो जल्दी तैयार होना है।
0: वो किस खुशी में?
2: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
0: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
2: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
0: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली, जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दवा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
2: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
0: वही बक बक बक बक बक बक कर रहे हो, किस जंगली से पाला पड़ा है। कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
2: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
0: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने मिलने आ रहा।
2: साहब जी आप सब कुछ भूल गया साहब, वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
0: ठीक है ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। हाँ, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ गेट आउट।
2: साहब जी
0: हा? तुम अभी तक यहीं हो
2: साहब?
0: क्या है
2: साहब, वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
0: हाँ, पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
2: नहीं साहब, आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
0: क्यों?
2: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
0: ठीक ही तो बोला है।
2: वो यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो लोग रीटा मैम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे?
0: तो उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
2: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
0: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
2: वो लोग ठहरे सीधे साधे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मैम साहब को फोन कर दो।
0: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
2: हाँ साहब, हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात कुछ जरा थोड़ा गौर करो साहब, जरा सोने।
0: बहादुर, अरे बहादुर दरवाजा खोलो यार, लगता है लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है, क्या मुसीबत है। अरे रीटा तुम, क्या बचा है?
3: डार्लिंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? और फिर तुम, मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
3: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाश देर से उठेगा, शो मेम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है, तो बोला साहब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर, मुझे तो डरा दिया उसने।
0: क्या बजा? 9:30, पर वो लोग 10 बजे आएंगे।
3: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
0: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
3: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्ट्री स्पीकर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ और 10 बजे से पहले ही रफू चलेगा।
0: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो, तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
3: मैं सब जानती हूँ, यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके? खूब तमाशा है, देखा मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड, लेट्स गेट मैरिड। लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटर के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। क्यों?
0: अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है।

महाराज के हवा महल में प्रस्तुत है हरि मेहरा लिखी नाटिका बहादुर की शादी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।

0: बहादुर आ गया लगता है।
1: हाँ।
2: बहादुर, बहादुर।
3: आया साहब, आया साहब।
4: ओ मेम साहब, आप भी आ गया।
1: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है।
4: हम साहब वो आज
1: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
4: सब कुछ बता दिया?
1: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
4: नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा।

0: बैठिए। अरे अरे
1: नहीं,
0: निशा यहाँ यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
1: अरे नहीं शाम, हम लोग नीचे ही ठीक है शाम।
0: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
1: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पे बैठ जाओ। शाम जी, ये हमारा घर वाली है शाम, हमारा लड़की की माँ है शाम। ये बहुत शर्माता है शाम, बहुत शर्माता है। अरे मैं शर्माती रहोगी या शाम को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
2: सलाम शाम।
0: सलाम।
2: सलाम मैम शाम।
3: सलाम।
2: बहादुर, ये तुम्हारी मालकिन है। तुम तो बोला था कि तुम्हारे शाम ने भी शादी नहीं बनाया।
0: ये ठीक कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट मतलब है सगाई हो चुकी है।
1: मैम शाम शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
4: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
1: होटल में शाम?
4: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
0: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है? ये लोग बहादुर के रिश्ते के आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
5: मैं अभी लाता हूँ साहब।
4: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
0: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
1: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
0: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
2: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माए बाप सब कुछ हैं, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है।
4: हाँ तो आप ठंडा लेंगे या गरम?
1: अच्छा साहब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे।
2: चलो आप शाप से शाप शाप बात कर लो।
0: हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है, इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
1: नहीं शाम नहीं, बहादुर के बारे में तो हम शाम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसका बाप हमारे गांव का है शाम।
0: तो फिर रुकावट किस बात की है, फौरन शादी कर डालिए। और हाँ बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
2: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
0: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
2: ना, ना, ना।
0: इसमें हर्ज ही क्या है, शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
1: अरे क्या बोलता है साहब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था।
0: वो तो नजर आ ही रहा।
1: क्या मतलब साहब?
0: नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
1: कुछ अदला बदला नहीं साहब, कुछ अदला बदला नहीं, दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है साहब। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है साहब। हाँ। कोई नुकश नहीं। हाँ, घर का सब काम का जानती है, खेती में काम करती है साहब, घर का चूल्हा चक्की।
0: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
1: शादी की बात भी हो जाएगा साहब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए साहब।
0: हाँ हाँ, क्या बात है?
1: तुम्हारी बात का साहब।
0: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
1: नहीं साहब नहीं, बात ये साहब के बात ये कि
2: मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है, अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो साहब को, साफ साफ साफ बात कर दो।
1: चल तू बोल दे साफ साफ।
0: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
1: नहीं साहब नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थू थूक दे साहब। हाँ ये फैसला तो आपको करना है साहब।
0: मुझको?
1: जी
0: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
2: साहब? आप शादी कब करेंगे?
0: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
1: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा साहब।
0: मेरी शादी? क्या मतलब?
1: मतलब ये साहब कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफी की हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
0: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं, मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहां करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
2: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को शाह बोल दो, शाह का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
1: ठीक कहती है तू, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा शाह माफी दे शाह, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया शाह। चल लक्ष्मी।
5: क्या बात है शाह, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
0: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
4: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
1: बात ये मेन शब कि मेरा
2: तो पीछे हटो, मैम साहब से हम बात करेंगे।

0: हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, ठीक? फिर तुम ही बोलो, तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब, हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
1: बिल्कुल ठीक।
2: रीटा तुम भी क्या इंतहा में हाँ मिलाती जा रही हो? किस्सा मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले, फिर बहादुर की शादी हो।
1: ये भी ठीक।
2: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
1: कभी नहीं हो सकता।
2: क्या नहीं हो सकता?
1: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
2: ये कोई जबरदस्ती है?
3: चलो लक्ष्मी। सलाम मैम साहब। सलाम साहब।
2: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए, आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
4: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
5: थैंक यू साहब, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं साहब। अच्छा बहादुर, शादी जब साहब का हो जाए तो हमको खबर देना।
1: अच्छा खबर नहीं, बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
5: जरूर आएंगे मैम साहब, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम साहब। सलाम मैम साहब।
1: सलाम
5: साहब।
1: सलाम
5: सलाम मैम साहब।
2: बहादुर इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ो।
3: हाँ साहब, जाते हैं साहब।
4: Oh darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
2: Good idea. मैं बस गया और आया।
3: विम साहब जी, साहब किधर गया?
4: अंदर कमरे में तैयार होने। वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
3: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मैम साहब। हाँ, हम साहब को रोज रोज समझाता था, साहब शादी कर लो, साहब शादी कर लो, पर अपनी कभी सुनता ही नहीं था साहब, तो इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था मैम साहब?
4: ठीक नहीं, हिट था बहादुर।
1: अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
3: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ, अपने मुल्क से बुलाए इनको।
1: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
3: और नहीं नहीं नहीं नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था।
1: हाँ,
3: हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। हाँ, तब हम अपनी पार्वती को बुलाएंगे।
4: क्या बात है, वाह बहादुर वाह। मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो। हाँ
3: थैंक यू मैम साहब।

बहादुर की शादी, हरि मेहरा की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्र...

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला गीत बैड बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार।

अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जो पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लेप्रोस्कोपी, IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल,

0: और मल्टीविटामिन, विटामिन डी थ्री, ओमेगा थ्री, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
1: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना, ऐश किंग और शशा त्रिपाठी की आवाजों में। गीत राफत महमूद और तनिष्क बागची का है, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड

0: अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान

0: कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानी

0: को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका निधन कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत जयदेव का है।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है कालीचरण, गीत इंद्रजीत सिंह तुलसिया का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर, इलारुन और साथियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिवहरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की अजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: के संसार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर युस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है, और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया की थोड़ी

0: दिल बेकरार सा है।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: जयंत जी,
0: जी
1: आज की विविधा का आरंभ, मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का। एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते, आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया
1: जी।
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी, जी,
0: रहे
1: जी।
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है, आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत

0: से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई, और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नौरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ए मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी, और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे, और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को

0: या दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नवरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ए मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोतो, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मन पसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन सुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना की हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है। इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

हो। वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती

0: तुम क्षमा मैं भूल हूँ, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए जी, तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर हाँ। बनाता है और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार
0: हाँ।
1: और इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात की है।
1: शायद इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी, एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की
1: जी,
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशौरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
0: जी,
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में डूम स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी फिल्म के लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था और उस फिल्म का नाम था

0: राजकुमार जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
1: जी, 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत। और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्ड सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए।

बहुत से भाई इस वक्त 2000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

0: लता।
1: हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतन जयंत साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतन आनंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने। यू नो, कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीज़ें जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सेप्ट करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में।
5: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया,
4: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीज़ें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई करता है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, वो छोटी छोटी चीज़ें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीज़ें बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है, स्पॉन्टेनियस सिनेमा।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुन करके बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल की बात है ये, और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं
0: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे, और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में, ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था, बहुत ही हिट था उन दिनों, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे।
1: जी हाँ,
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे, और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं
0: जी।
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था
0: जी।
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा, जो आम तौर से लोग बहुत ज़्यादा सीख कर गाते हैं, उस तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है,

0: तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी भी कही है या रफ़ी साहब की चाहत थी क्या थी कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं ना
1: जी,
0: प्रिट नेम है बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है। तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
1: जी,
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर। इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं क्योंकि रोज का काम है उनका।
1: जी, जी।
0: वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एक तो सन्नाटा छा गया। वो
2: न फनकार तुझसा

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व। गाना जब बनता था ना तो जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से कुछ आइडिया देते थे
0: जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया? अच्छा
1: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या
0: जी।
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों
0: जी,
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है।
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
1: आपको बताओ, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने। मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए
0: जी,
1: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया
0: जी, जी।
1: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ
0: क्या
1: पूरा
0: बात
1: हो गया
0: है?
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था?
1: मैं एक दफा गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई एस डी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था
0: जी,
1: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए नए लड़ जाए हैं ये सब
0: जी,
1: बिहार
0: जी।
1: का सिचुएशन देखकर पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब? जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला। देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो।
0: अच्छा।
1: वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर। और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अदना एक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार

किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज़ दे कहाँ है, और गाने के बोले रुलाने को आंसू, जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अन्नू मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा, इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं। एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी जी,
1: नात मनकबत जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी,
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी
0: जी हाँ।
1: संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है।
0: अच्छा,
1: वो सारे हनुमान चालीसा, सारा टाइटल भी आपने सुना होगा, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है ना, वो सब मेरे गाए हुए। इतने मुश्किल, पूरा चौपाइयां दोहे जो जो थे वो सारे सब मैंने गाया। मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
0: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है, और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए।
0: अच्छा,
1: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं
0: जी,
1: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो इसमें 4 सिंगर, तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था
0: जी।
1: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2,500 है, और 4,000 के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने
0: जी जी,
1: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10,000 के ऊपर गाने हैं मेरे।
0: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
1: 17 या 18।
0: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
1: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब के रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है, क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते हैं।
0: मगर मनीषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस आएंगे विविधा का अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को आपके मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जमाने को दिखाना है। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: दस्ते आंख तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।